0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये न सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 24/7 365.
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL।
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब?
7: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
6: स्पेशल तो लग रही है।
7: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना?
9: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौमे आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
11: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
12: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
14: 79 सालों से पीटीसीएल है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना पीटीसीएल की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
3: कैडिलैक नॉनस्टॉप फन करते जाओ।
1: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: एंड
5: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
1: एंड
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
8: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
14: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा. अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी. खास तौर पर ज्यादा शुक्र अदा करें कि हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं. और हो सकता है अगर आप 79 से ऊपर हैं तो फिर हो सकता है कि आप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं. और हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. हम पढ़ रहे हैं सूरह गाशिया का तर्जुमा. आइए पढ़ते हैं आगे आयत नंबर 16 से. औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया है और पहाड़ों को कैसे कायम किया गया है, जमीन कैसे बिछाई गई है. तो तुम नसीहत करो, तुम तो नसीहत करने वाले ही हो, तुम कुछ उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो. हाँ, जिसने मुंह फेरा और कुफर किया तो उसे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा. बेशक हमारी ही तरफ उनका लौटना है, फिर बेशक हम ही पर उनका हिसाब लेना है. बेशक हम पर ही उनका हिसाब लेना है. आप सुन रहे थे सूरह गाशिया का तर्जुमा और इतनी खूबसूरत इसमें बातें कुरान के तर्जुमे में अगर आप गौर व फिक्र करें कितना कुछ सीखने को मिलता है. ये भी है कि तुम नसीहत करने वाले हो, तुम जबरदस्ती करने वाले नहीं. दीन में जबरदस्ती नहीं होती. जो बंदा प्यार से आपकी बात मान ले यही सबसे बेहतरीन बात है. जबरदस्ती करेंगे तो उसका अंजाम सही नहीं है. और राइट, तो आप जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें. और हम मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक ऑब्वियसली कौन सा होने वाला है. ऑब्वियसली हमारा टॉपिक आज का ये है कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया. हम अक्सर पूछते हैं ना इस मुल्क ने हमें क्या दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा काम अंजाम दिया. हम मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद.

0: मसीवाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1,000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड कैडिलैक
8: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
9: एंड हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
10: FM 24/7 365 FM 24/7 365

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और 14 अगस्त की क्या तैयारियां हैं, और बच्चा पार्टी तो आज बड़ी तैयार होके गई है क्योंकि स्कूल के अंदर लोग यूनिफॉर्म के अलावा ग्रीन एंड व्हाइट कपड़े पहनते हैं। आजकल 14 अगस्त के खास कपड़े आए हैं, और जो पेरेंट्स खरीदते हैं बच्चों के लिए कि नहीं 14 अगस्त उनको ये, क्योंकि अगर दोस्तों ने पहना है तो फिर आपने तो लाजमी ही पहनना है। और स्कूल में फंक्शन होते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मिली नगमा, इट्स सो नाइस। और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे फिर ये सारी बातें हमेशा याद रखते हैं कि जो 14 अगस्त हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन हुई थी। और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इस बात को रियलाइज करें, नॉर्मल डे ही नहीं बना लें। 14 अगस्त को छुट्टी होती है तो 30, और वैसे भी टुडे दिस इज लाइक अ रियली गुड टाइम क्योंकि आप 13 अगस्त को आप सेलिब्रेशन करें और उसके बाद तो फिर छुट्टियां हैं, आगे लॉन्ग वीकेंड है, तो बच्चे बहुत खुश हैं इस बार। ऑलराइट, और सो मैं भी बहुत खुश हूँ बच्चों की हर चीज ने, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि भाई आप जो है, मतलब आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, कुछ बता दें हमें। जैसे मुल्क का वक्त ही जाया कि मुल्क पे क्या बोझ है, धरती पे बोझ है आप, राइट। अच्छा जी, और नैन्सी करें जी, हमने सबर किया फ्यूल की प्राइस पे, मेरिट पे जॉब ना मिलने पे, यूनिवर्सिटी रोड की हालत पे, प्रोटोकॉल में 30 मिनट वेट करने पे, एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, और क्या क्या बताऊं मैं। खास इतना ज्यादा सबर भी हर चीज पे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उसने कहा था सबर अच्छी चीज है लेकिन हर चीज पे सबर नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ सबर करना चाहिए और कहाँ अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। और हम तो ईमान वाले हैं, हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आई डोंट थिंक वो उतने ईमान वाले पक्के हैं। तो ताकत तो हमारे अंदर है, जिस दिन अवाम ने अपनी ताकत को पहचान लिया तो ये लीडर्स, ये सारे करप्ट लीडर्स, ये जो शो मार रहे होते हैं अपने डालों के अंदर, हालांकि 0/0 इज्जत है हमारे दिल में उनकी, तो इनका कुछ भी नहीं चल सकता। इंसान के अंदर, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस और ताकत होनी चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि आगे इलेक्शंस के अंदर आप इन लोगों को पहचानें। अगर आपका, आपको लगता है कि धांधली होगी तो फिर आप ना ही दें इनको वोट, बाकी किसी को भी ना दें। ऑलराइट, खैर आप लोग जो है, लेकिन खैर इलेक्शन एक तरीका है चेंज लाने का, तो मैं यही नहीं कह सकती कि वोट ना दें, लेकिन ये कि बिल्कुल सोच समझ के वोट दें कि आगे आने वाले लीडर्स कम से कम उनके दिल में अपने मुल्क से तो मोहब्बत हो, मतलब कुछ तो मोहब्बत हो मुल्क से, जो मुझे लगता है कि लाइक है ही नहीं। और आम लोगों को होती है, आम लोग सजाते हैं, आम लोग प्यार करते हैं, मुझे पता नहीं लीडर्स को लगता है कि इनको होगी, इनके चेहरों पे है मोहब्बत, दूर दूर तक तो मुझे उनसे मोहब्बत नजर नहीं आती। और राइट, खैर आज एनजी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, आई रियली रियली लाइक इट। ओके, और बाकी लोगों से भी कहूंगी कि आज का हमारा टॉपिक है कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। और आज हम सब जो है वो नेशनल सॉन्ग्स लगाने वाले हैं और 14 अगस्त मना रहे हैं, कल से हम नेशनल सॉन्ग्स लगा रहे हैं। एंड कुछ हमारे नेशनल सॉन्ग्स जो है ना वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं सोचती हूँ कि इस पे हम जो है यही लगा देते हैं, ए वतन प्यारे वतन, आइए सुनते हैं।

और राइट जी, हम ए वतन प्यारे वतन, और आज जो है जज्बे बड़े हाई हैं, पेट्रियोटिज्म एट इट्स पीक, और हम बात कर रहे हैं आपसे कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। और यकीन करिए जो लोग इतने अरसे से इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लीडर्स, तो हम उनसे यही उस सवाल अगर हम उनसे भी करें कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, क्योंकि आपकी वाहिद जॉब डिस्क्रिप्शन यही थी कि 100% जो भी करना है मुल्क के लिए करना है, वो ही करे तो खैर। अब उनसे उम्मीद रखना छोड़ दें, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए

0: खासी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्स के साथ सरसब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्स पाकिस्तान।
1: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 03111117837.
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
10: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
13: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
14: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
15: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या। जैस कैश ऐप नाउ।
16: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
17: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रबते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक

0: पाकिस्तान और
1: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा। हमारे पास आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास सैयद उमेर अशरफ का मैसेज आया है जो अपनी प्यारी बेटी फातिमा को लेके जा रहे हैं। सो हम कहना चाहते हैं फातिमा गुड लक, आप बहुत प्यारी लग रही हो। आई होप कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी है और आई एम श्योर कि होगी और सब आपके लिए बहुत तालियां बजाएंगे और आपके डैडी को और आपको और आपकी पूरी फैमिली को और पूरे स्कूल को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू आर लुकिंग सुपर डुपर क्यूट। ऑलराइट, तो बच्चे बहुत तैयार हो के जा रहे हैं, मतलब यू नो दे गोइंग एंड टू स्कूल। मैं भी जाऊं, मतलब 14 अगस्त वाले कपड़े पहन के जाऊं मैं। खैर मैंने ग्रीन कपड़े तो पहने, मैंने बैज भी लगाया। अगर आपने बैज नहीं लगाया तो मतलब क्या सीन है ये, मतलब क्यों नहीं लगाया। ऑलराइट, सो हमें इनजी कह रहे हैं कि जूनियर जमशेद का गाना लगाएं। ऑफ कोर्स हम लगाएंगे जूनियर जमशेद का गाना, लेकिन वो भी मगर उसका एक अलग टाइम है। और हमारे पास वसी अहमद सिद्दीकी, आबिद अमीर, अब्दुल रऊफ साहब का भी मैसेज आ गया है जो हम शामिल करेंगे। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त में लोगों को इश्तिहार देने का टाइम मिल जाता है, उस वक्त याद आता है अच्छा 14 अगस्त गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवर्टीजमेंट, तो बहुत सारे लोग इसको मिस नहीं करेंगे और रेडियो वाले भी मिस नहीं करेंगे। जाहिर है इश्तिहार चलते हैं तो हमारा काम भी चलता है। एनीवेज, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे, और मेरा आज का टॉपिक है कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया।
2: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं. थैंक यू सो मच आप लोगों ने मैसेज किया. और जाहिर है आज हमारा यही सवाल है कि मतलब आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया. अच्छा, और तो फिर आप लोगों के मैसेजेस हैं और हम शामिल करेंगे. हमारे पास वसी अहमद सिद्दीकी का भी मैसेज आया हुआ है और वसी अहमद सिद्दीकी का मैसेज हम शामिल करेंगे. आइए पढ़ते हैं कि उनका मैसेज क्या है. वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का बहुत शुक्र गुजार हूँ. उस मुल्क ने मुझे इल्म व फन से सरफराज किया. मैंने अपने शोबे में जो काम किया वो ईमानदारी और मेहनत से किया और अपने इदारे की बेहतरी में अपना किरदार अदा किया. जो इल्म हासिल किया वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की. यही मेरी काविश है पाकिस्तान के लिए. क्या बात है, बेहतरीन. वसी अहमद सिद्दीकी, मुझे आपसे ऐसे ही मैसेज की तवक्को है. लेकिन आप करते हैं क्या है? ये नहीं आपने एग्जैक्टली कभी बताया कि आपका काम क्या है. मुझे लग रहा है कि आपका कोई सरकारी काम से जरा गहरा ताल्लुक है. और सरकार के बारे में हम क्या कहते हैं ये तो आप जानते हैं. ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. और राइट, और आबिद अमीर अभी मैसेज किया, बच्चों के तीन स्कूल से मैं एक की सेलिब्रेशन आज है, दो की कल, यानी कल सुबह से देर दिन नहीं गुजरेगा और बल्कि तैयारी शुरू होगी सुबह से. वाह भाई वाह. देखिए 14 अगस्त में कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, वरना लोग घर में ही गुजार देते हैं. और आप तो खैर, मैं तो खैर, हम वी आर बिग ऑन सेलिब्रेशन. मैं तो हर चीज ही सेलिब्रेट कर रही होती हूँ. मुझे तो बस मौका चाहिए सेलिब्रेशन का हर दिन में. और आबिद अमीर, हम चाहे तो हर दिन सेलिब्रेट करें. मेंटल हेल्थ डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर दिन. लेजी, एक होता है लेजी डे, वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं. तो आप तो ये 14 अगस्त है. और क्या कहते हैं आबिद अमीर के भी कह रहे हैं कि असला पाकिस्तान के लिए मैंने शायद कुछ ना किया, मगर पाकिस्तान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. बहुत इतनी सारी सेलिब्रेशन, इतने सारे मजे मजे के इवेंट्स और खाने इतने यमी. मैं सोचूं कुछ आप सोच लें आबिद अमीर कि पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली आपने क्या किया, क्या बताएंगे अपने बच्चों को. और आदिल हसन कह रहे हैं काश हम अपने मुल्क से मोहब्बत ही कर लें जिसका वो हकदार है. हमने क्या किया मुल्क के लिए, ये बहुत दूर की बात है. अलबत्ता हमारे मुल्क ने हमें नाम दिया, पहचान दी. बस हम अपने मुल्क से मोहब्बत कर लें. इतनी ये खूबसूरत बात है ना आदिल साहब, कि बस दिल जीतने वाला मैसेज है. मोहब्बत ही तो नहीं है. अब क्या लगता है हमारे लीडर्स को मोहब्बत है मुल्क से? बल्कि वो मोहब्बत नहीं करते, वो नफरत करते हैं. वो अवाम से भी नफरत करते हैं. इसे किसी कुछ लोगों को ना गरीब, क्योंकि अवाम है गरीब और लीडर्स हैं अमीर. और अमीरों को कुछ अंदर से वो माने या ना माने, गरीबों से कोई खास लगाव और मोहब्बत नहीं होती. गरीबों, आपने कभी हमें देखा कोई लीडर गरीब है साइकिल में जा रहा हो, है वो कह रहे जी मैं गरीब हूं मगर क्या करूं, मेरे अंदर काबिलियत है. और मैं यहां पे काबिलियत का मयार ही पैसा कमाना है. काबिलियत का मयार क्या है? डाला, आपके पास डाला है और आपके आगे पीछे वो चेले घूम रहे हैं. आप काबिल इंसान हो जाए, वो बंदा काबिल है, उसको नहीं चाहिए चेले. हैं, PhD भी किया हुआ है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं. यहां इज्जत ही डालो. जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे कि इज्जत काबिलियत ये पढ़ाई करने से आती है, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने से आती है, गाड़ियां लेने से नहीं आती और अपने आगे पीछे चेलों के फौज लेने से भी नहीं आ सकती और किसी सियासतदान के घर में पैदा होने से भी नहीं आती काबिलियत. तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक हमारा मुल्क मुश्किल है कि तरक्की करे. लीडर्स का तो कोई हाल नहीं है. आप हमें मैसेज करें आज सुबह के फेसबुक पेज पे या आज सुबह इंस्टाग्राम पे.
1: FM 100 टाइम चेक. इट्स 9 AM. इस मुल्क की पासवानी, निगरानी और तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करने का और आजादी की खुशियां मनाने का दिन, आजादी की खुशियां मनाने का दिन. कल 14 अगस्त यौम आजादी पाकिस्तान.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाए, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से शोम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रूपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
7: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
8: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
9: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
7: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
10: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL। And
3: Candyland, non-stop fun करते जाओ।
1: And
4: फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: एंड
5: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
1: एंड
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365।
8: FM 247365।
9: Let's celebrate
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: वेलकम बैक जी। आफ्टर द ब्रेक आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आज सुमीहा। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया। आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास और हमारे पास भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है HBL की जानिब से। अब खोले अपना HBL फ्रीडम अकाउंट और हासिल करें मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत। अकाउंट खोलना भी बहुत आसान है। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच और अब नए HBL मोबाइल ऐप के साथ बैंकिंग का नया अंदाज एक्सपीरियंस करें। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। जी हाँ, आप सुन रहे थे ये पैगाम और अब हम आपके पैगामात की तरफ चलेंगे। हमारे पास अली रजा का भी मैसेज आया हुआ है, इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आया हुआ है। अली रजा जो है एक सेकंड, अली रजा कह रहे हैं बहुत टैक्स दिया और दिए जा रहे हैं हम। हाँ जी, तो टैक्स आप जो दे रहे हैं ना उसे याद रखिएगा अली रजा, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोग अपने गाड़ियों के आगे लगाया होता है ना कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, उनको बोले हेलो हमारे एम्प्लॉई हो तुम लोग, क्योंकि हमारे टैक्स से तुम लोग की तनख्वाह आती है ना, तो उतने भरम मत मारा करो। तो ये पब्लिक सर्वेंट जो है ना, सारे हमारे अपने सर्वेंट है, लेकिन ये हमारे ही हुक्मरान बने हुए, मतलब हमारे टैक्सेस से आपका आपकी नौकरी चलती है और आपकी नौकरी सिर्फ ये है कि हमारे लिए आप लोग चीजें आसान करें। तो आप किस बात पे, और आप लोग फेल हो चुके हैं उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी की पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट दारों में HR क्यों नहीं होता। HR तो मतलब वो करी है HR जो है ना, वो HR से मुझे याद आया कुछ, लेकिन जो है कुछ भी बोलूंगी नहीं। इकबाल हुसैन कह रहे अस्सलाम वालेकुम समीर जी, हमने पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट पे टैक्स दिया 79 साल से, हर जुर्म नाइंसाफी मेरिट को पामाल होते देखा, हुक्मरानों को मुसल्लत होते देखा, खामोश रहे सिर्फ इसलिए कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान है तो हम है। दुआ अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे। मेरा मैसेज सख्त है लेकिन हकीकत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल ही हकीकत है तो सही, लेकिन हम ये देखें ना इकबाल हुसैन, हमने क्या किया, क्या हमने आवाज उठाई, क्या हमारे सामने जब पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन कोई आया तो क्या हमने हक का साथ दिया या हम चले गए उसके साथ सेल्फियां खिंचवाने। हमने क्या आवाम की आवाज बनी। कराची वालों से सिर्फ मुझे यही वो है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। बांग्लादेशियों ने अपने हक के लिए आवाज उठा ली लिटरली। इंडिया के अंदर उन लोगों ने रिजाइन करवाया मिनिस्टर से। कराची वाले न जाने किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। वो बस क्या कहते हैं सोशल मीडिया के वो हैं, कुछ होते हैं ना सोशल मीडिया वॉरियर्स, वो हैं बस, बुराइयां करा लो। व्हाट हैव यू डन। और हमेशा आपको मैं बात बताऊं कि ये मुझे करना पड़ेगा, उन्हें खवातीन ही कुछ करेंगे इस मुल्क के लिए। मर्द तो बस बैठे हैं, नौकरी बचा रहे हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं, उनको कोई नहीं पड़वा। वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं भाई कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये कहना भी गलत बात है, क्योंकि आप क्यों इतने नाउमीद हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें अच्छे लीडर्स दे और फिर कोशिश भी करें। और कभी दफ्तरों में अगर आपको एतराज करने प्रोटेस्ट करने अकेले ना जाएं, चार लोग भी ले जाएंगे ना अपने मोहल्ले के, इन लोगों की ऐसी की तैसी होनी चाहिए, अकेले मजलूम शक्ल बना के लेके जाएंगे तो फिर किसने सुननी है आपकी बात। मैं तो बता रही हूं, जब भी आप जाए ना किसी सरकारी महकमे में अकेले कभी भी नहीं जाए। इसमें भी इतिहाद नहीं है, भाई नहीं आएगा साथ में, क्या भाई तू चला जाए, मुझे तो ऑफिस छुट्टी नहीं मिली, अगर मोबाइल चोरी हो गया तो खुद ही करवा ले रिपोर्ट, ये तो हाल है। फिर आप कहते हैं मसला, इसी बात का फायदा उठाते हैं सारे लोग। आई होप कि आप लोग कन्विंस हो गए होंगे कि आपने कहीं भी अकेले नहीं जाना। चार लोगों को जो कहते हैं ना, चार लोग बातें कर रहे हैं तो आपने चार लोगों لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید جذبات کی روح میں بہہ جاؤں چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.
12: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. اس ملک کی پاسبانی، نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن، آزادی کی خوشیاں منانے کا دن کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان، یوم آزادی پاکستان.
13: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
14: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: This program is brought to you by
7: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड कैडिलैक लॉट्स ऑफ फन करते जाओ।
8: एंड
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड
11: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
8: एंड
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
12: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
13: FM 247365
14: 100 FM.
15: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

दिल दिल पाकिस्तान, मैंने इस गाने पे बहुत इनाम जीते हैं. सो थैंक यू जूनियर जमशेद फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग. इसमें तो इंडिया वालों ने भी बना लिया है दिल दिल हिंदुस्तान, ये इतना ज्यादा पॉपुलर गाना है. एनीवेज वक्त तो एक ब्रेक का, और आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे, और आपने हमें ये बताना है कि आपने अपने मुल्क के लिए आखिर कुछ किया भी है या नहीं.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौमे आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
5: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जोंग मंथली प्रो मैक्स प्लस पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
8: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka at shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
9: Jazz Cash ke saath pao phir se 1 crore jeetne ka shandar mauka. Ab har mahine apne Jazz Cash account mein 15,000 rupees ya zyada ka balance maintain karne par 60 lucky winners ko milega 5,00,000 rupees tak ka inaam aur saath hi saath milega 1 crore ka bumper prize. Balance maintain karne par karodon ke cash prizes jeetne ke liye Jazz Cash hai na.

0: पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
6: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना।
7: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द JazzCash ऐप नाउ।

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.
2: सुनो,

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: कैडिलैक नॉट सो फन करते जाओ
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा एंड
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस कपाल दानेदार
0: इस मुल्क की पासबानी निगरानी और तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करने का और आजादी की खुशियां मनाने का दिन आजादी की खुशियां मनाने का दिन कल 14 अगस्त यौम आजादी पाकिस्तान यौम आजादी

0: एच बी एल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।

रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM247365।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट।

0: to the bank. Easy Wala Bank.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार.
2: 100 FM.
0: This song is brought to you by EcoStar.

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
0: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।

0: वाला बैंक।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
1: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Saga.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: FM 247365
4: FM 100
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

यस एवरीबॉडी, सो इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज भी हो चुका है, जो कि आज हमने एक अदद मिली नगमे के साथ किया था। वैसे हम काफी दिनों से प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल कर रहे थे एक अदद मिली नगमा, लेकिन आज भाई आज मैंने सोचा है कि आज हम पूरा दिन ही मिली नगमों को शामिल करेंगे, यानी कि 12 से 2 के दरमियान जो हमारा और आपका साथ होता है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में, आज उसमें हम यही मिली नगमों को शामिल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे ऐद भी करेंगे, जिस पर कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और आज का हमारा सवाल क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो जल्दी से अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाएं और बताएं कि इस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं। हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रेजेंट लगाना है बहुत जरूरी, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंस। तो जल्दी से मैसेज करें और हमें बताएं कि इस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

Yes, everybody. So I am back again. और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है और बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं 14 अगस्त से रिलेटेड, क्योंकि सिर्फ एक रोज दूर है हम जश्न आजादी मनाने से. और उसी के साथ साथ हमने आपसे सवाल भी पूछना है जो कि अभी तक पूछा नहीं. पहले मैंने कहा भाई सबको जगा देते हैं और सबसे कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाएं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने. तो इस वक्त कौन हमें कहां से सुन रहा है ये आपने हमें मैसेज के जरिए ही बताना है कि जी इस वक्त आप हमें यहां से सुन रहे हैं, इस वक्त आप जो हैं वो इस वक्त घर पे हैं या फिर इस वक्त सफर में हैं या फिर इस वक्त बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं. अच्छा भाई कल ऐसा कुछ हुआ, कल इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कल मुझे भी जाना पड़ा अपनी भांजी के लिए खरीदारी करने के लिए, यानी कि भाई 14 अगस्त का एक सूट खरीदने के लिए जो कि सफेद रंग का चाहिए था, उनके स्कूल में ऐसा रिक्वायर्ड था. तो भाई मैं तो हैरान ही रह गई, जिसे देखकर बहुत खुशी भी हुई क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जी हर स्टॉल पर और हर जगह पर ईद का समय है, लोग इस तरह खरीदारी कर रहे थे कि बस. तो जिसे देखकर ना बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा मजा आया लोगों का ये एक्साइटमेंट देखकर कि किस तरह लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं कि भाई लड़कियों के लिए चूड़ियां भी खरीदी जा रही हैं, तो ये कपड़े, तो भाई इस तरह का स्टोल, तो भाई लड़कों के लिए फौजी वाले कपड़ों का इंतखाब किया जा रहा है. तो बहुत अच्छा लगा कल देख के कि लोगों का जो जोश और जज्बा जारी है और इसमें बच्चों की अलग अलग किस्म की फरमाइशें भी कि जी ये वाला लेना है वो वाला लेना है. उसी के साथ साथ बच्चे बाजे भी खरीदते हुए नजर आ रहे थे, जिनके वालदैन कह रहे थे कि पहले भाई साइज चेक कर लो, अगर ये ठीक हुआ तो चलो ये भी दिला देंगे. लेकिन ये जोश और खरोश जो हर जानब देखने को दिखा

यस एवरीबॉडी, तो हमारे सवाल के जवाब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से सवाल दोहरा देते हैं कि हमने आज आपसे क्या पूछा है। तो हमने आपसे आज ये पूछा है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था। उन शख्स का नाम आप हमसे जरूर शेयर करें। ऐसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान फेसबुक पेज पर भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी हमने पोस्ट डाला हुआ है। और अपने हाल अहवाल बताएं भाई, मौसम पर भी हमने बात कर ली है, जश्न आजादी इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे, तो आप लोगों की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। 79 ईयर्स ओल्ड हो चुका है पाकिस्तान, और इसमें से भी बहुत सारी ऐसे लोगों की यादें जुड़ी हैं जिनको अब 79 ईयर्स बहुत लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो वक्त भी देखा है जब हम आजाद हुए, क्या क्या मुश्किलात का सामना करके। हम तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हम एक आजाद मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने बड़ी मुश्किलात उठाई, कितनी जिद्दोजहद और कितनी सेक्रीफाइस कर हमें ये मुल्क मिला है, तो ये तो वाकई में हम इसकी एक्चुअली में वो मुश्किलात उन चीजों का समझ ही नहीं सकते जितने लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत से मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये मुल्क दिया है। तो ये अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है कि जी हमारे पास ये मुल्क मौजूद है जहां पर हम आजादी मनाएंगे इंशाल्लाह कल, यानी कि 79 ईयर्स ओल्ड का हो चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ऐसी रहे और इसी तरह हम हर साल जो है जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाते रहे इसी जोश खरोश के साथ, जिस तरह हम हर साल मना रहे होते हैं, बड़ी एक्साइटेड होते हैं, सफेद और हरे कपड़ों की खरीदारी कर रहे होते हैं, बैडेज लगा रहे होते हैं, झंडे लहरा रहे होते हैं। इस वक्त हर जाने भर गली इतनी खूबसूरत लग रही है, लोगों ने सजावट तो की है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टॉल्स नजर आ रहे हैं ना, उससे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हर जाने भर सू ये डेकोरेशन, ये सजावटें, ये लोगों का जोश जज्बा, ये हमेशा ऐसे ही रहे, क्योंकि इसे देखकर दिल और भी बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं सोच रही हूं, क्योंकि बातों का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी है, लेकिन क्यों ना हमें एक और भी मिले नगमे की जानिब जाना चाहिए। आज मेरी कोशिश है कि आज हम ऑलमोस्ट सारों को ही शामिल कर लें, वो सारे जो हमारे बड़े फेवरेट हैं, वो सारे जो हम सुनते आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश यह है कि एक एक कर हम ऑलमोस्ट तमाम को ही शामिल करने की कोशिश करें, विच इज नॉट पॉसिबल इन टू आवर्स, कि दो घंटों में हम तमाम मिले नगमों को तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जितनों को कर सकते हैं उतनों को तो करते हैं शामिल।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
4: इस मुल्क की पासवानी, निगरानी और तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करने का और आजादी की खुशियां मनाने का दिन,
5: आजादी की खुशियां मनाने का दिन
4: कल 14 अगस्त यौमे आजादी पाकिस्तान।

0: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.
8: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas. Aur aaj hai 13 August, aur aaj hum Rashn Azadi ki tarah hi is din ko bhi mana rahe hain, kyunki hum Rashn Azadi se sirf ek din door hain, aur aaj hum Mili Naghmo ko bhi shamil kar rahe hain, aap logon se guftagu bhi kar rahe hain. साथ ही साथ हमने आपसे सवाल भी पूछा है एक अदद के, जी हां, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था, तो उन शख्स का नाम हमें बताएं. ये हमारा आपसे आज का सवाल भी है और गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ हमारा जारी है. लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत तो आप जानते ही हैं कि एक तो ट्रैक डेडिकेट किया जाता है तमाम सुनने वालों के नाम, और पिछले कई दिनों से तो हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक अदद मिली नगमे को शामिल किया कर रहे थे, और आज हम ऐसा कर रहे हैं कि आज तो हमने पूरा दिन ही मिली नगमे लगाए. तो चलें जी, वैसे वो कहते हैं ना कि जी प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, तो वो वाकई में हारून के इस ट्रैक के बगैर तो वाकई मुझे लगता है 14 अगस्त ही आजकल इनकम्प्लीट है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फेवरेट ट्रैक ऑफ एवरीवन एंड माइंड टू. मुझे भी बहुत पसंद ये वाला जो है मिनी नगमा. तो पहले इसी को शामिल करते हैं प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत को कायम करते हैं, और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं.

दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। तो यस जी, प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो चुकी है कायम और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला भी हमारा जारी है। यस एवरीबॉडी, सो बातें भी आपसे कर रहे हैं और लुक वर्ल्ड भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं और उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। I mean, गुफ्तगू अब करेंगे क्योंकि उनका मैसेज अब हमारे पास आया है। सो लुक वर्ल्ड, आप भी हमारे जो है वो RJ फातिमा खान की फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। कभी आप मैसेज करती हैं, कभी नहीं करती हैं, तो आप उस पर भी एक्टिव रहेंगी। सो इसी के साथ साथ RJ फातिमा खान का फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो करें। वहां पर भी मैंने जो है ये क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां पर भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं। RJ फातिमा खान, सो वहां पर भी आप पोस्ट करें और वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैसेज भी कर सकते हैं। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली RJ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती हैं, आज लंच में चुकंदर और बीफ पुलाव है, वेरी नाइस। कहती हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने अपना लंच बताया और हमारे सवाल का जवाब भी दे दिया। ऑल राइट, तो अभी बताएंगे आपको कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। कहती हैं, प्लीज प्ले रहीम शाह सॉन्ग क्या हम? ओके, जरूर हम इसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। रहीम शाह ने भी कोई नेशनल सॉन्ग गाया है भाई? अगर गाया है तो जरूर हम इसे शामिल करेंगे, क्योंकि आज हम सिर जो है वो नेशनल सॉन्ग्स को ही प्रोग्राम में ना शामिल कर रहे हैं, क्योंकि भाई कल इंशाल्लाह हम 14 अगस्त मनाने वाले हैं, यानी कि जश्न आजादी कल हम इंशाल्लाह मनाएंगे। और मैं ये चाह रही थी कि आज हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो इस तरह के नेशनल सॉन्ग्स को शामिल करें। और भाई आपके लंच में क्या है ये भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम कर रहे हैं ये जानने का बेसब्री से इंतजार कि भाई आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है। तो जल्दी से मैसेज करें और हमें बताएं कि आपके लंच में क्या है। जब तक हम भी चलते हैं एक अदद मजीद नेशनल सॉन्ग के जाने पर, आते हैं वापस उसके बाद।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
1: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: वाला बैंक। दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
1: Step School से foundation हो strong. Call now at 03111117837.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
4: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
5: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
6: हमारी जिम्मेदारी है।
7: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
10: लेजेंड ऑलवेज अलाइव।

जी जनाब, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. एंड आप लोगों को बताते चलेंगे, आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है, जस्ट टाइप कीजिए देन लीव स्पेस, आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट, और से 3636 पर भेजना है. सो जनाब, टुडे इज 13th ऑफ अगस्त एंड कल जो है वो 14th अगस्त है, यानी इंडिपेंडेंस डे है, जश्न आजादी है. सो हाउ इज द प्रेप आर गोइंग, आप लोग की तैयारियां कैसी जा रही हैं? सजा लिया सब घर भर में, झंडियां लगा ली आप लोगों ने, लाइट्स लगा ली. सो आई वॉज जस्ट, जब मैं आ रही थी तो मैंने रात में जैसे देखा था, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ है हर जगह, काफी ग्रीन लाइट्स, व्हाइट लाइट्स, यू नो, एंड झंडों के साथ, झंडियों के साथ, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से. आप लोगों ने अपना घर जो है वो सजा लिया, अपनी स्टेयर सजा ली, क्या किया है, लाइट्स लगा ली, लेट अस नो ऑन 3636 मैसेज करके आप बता सकते हैं. एंड टुडे यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द लवली नेशनल सॉन्ग्स. आज हम प्ले कर रहे हैं, नेशनल सॉन्ग्स भी प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम वो भी प्ले कर रहे हैं. सो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं एंड देन फिर वापस आते हैं. आप लोग हमें मैसेजेस करते रहिए 3636 पर एंड facebook.com/rz.jasmine वहां पे भी आप मैसेज करके हमें अपना बता सकते हैं, जो भी आप सॉन्ग जो है वो सुनना चाहते हैं. मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: non-stop listening pleasure.
1: 24 hours.
2: This is FM 100, Pakistan. Today's smooth music. Smooth music. Non-stop. Non-stop.
1: 24 hours.
2: This is FM 100.
3: DJ mixing the beats.
4: Beats.
5: Mixing
4: the beats. Beats.
1: 24 hours.
6: FM 100.
7: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: Pakistan!
7: Is mulk ki paasbani, nigrani aur tarakki ki zimmedari qubool karne ka aur azadi ki khushiyan manane ka din.
9: Azadi ki khushiyan manane ka din.
7: Kal 14 agast yom e azadi e Pakistan.
9: Yom e azadi e Pakistan.
10: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
11: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ.
12: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
7: This program is brought to you by
13: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
14: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
15: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
16: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
17: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.
4: Information flooding fast through the airways. FM 100.
2: Non-stop listening pleasure.
4: 24 hours.
2: This is FM 100, Pakistan.
5: Today's hit music.
6: KHI space. Your text message. Send it to 3636.
8: Genie in radio.

0: Radio.
1: Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. इट्स 20 मिनट्स पास्ट यू ऑन द डायल राइट नाउ और हम लोग आप लोग के साथ 4 बजे तक मौजूद हैं. आप लोग मैसेजेस करते रहिए 3636 पर. शनीला ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम आरजे जैस्मिन. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं. प्लीज प्ले वतन की मिट्टी गवा रहना. शनीला ने हमें मैसेज किया, ठीक हो गया शनीला, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड नूर हैशटैग स्टूडेंट, वालेकुम अस्सलाम नूर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं. ऐसा कह रही हूँ 14th अगस्त की तैयारी हो गई है और हमने व्हाइट और ग्रीन जो है वो कपड़े लिए हैं, बच्चों के लिए भी लिए हैं. वेरी नाइस यार. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड She has requested for the song called Yundi Hame Azadi Please. Ye play kar dijiyega. Theek hai janab, done ho gaya, zarur play kar denge aapke liye. So right now we are moving on towards the request of Shanila. Milte hain is gaane ke baad. Hamare saath rahiyega, messages karte rahiye 3636 for her.

Alrighty, so now welcome back, Absolute for 100 Pakistan, and after your comment messages, get in 3636 for facebook.com/arjit or jasmine baby. Aap hume inbox mein messages kar rahe hain, aur wahan pe bhi kafi sare messages aa rahe hain. And we have got a message here from Amna. Unhone page pe hume message kiya hai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. मैंने ग्रीन व्हाइट चूड़ियां ली हैं. अरे यार ये बड़ी अच्छी लगती हैं, यू नो 14th अगस्त में अगर आप इस तरह की ईद पे तो वैसे ही हम लेते ही लेते हैं, लेकिन ये भी दिन एक ईद से कम नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, लिखा है बदगुमान का OST लगा दीजिएगा. ठीक हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया. ओके, शनीला ने मैसेज किया है, थैंक यू आरजे जैस्मिन, मैंने तो जुलाई में ही ड्रेस ले लिया था फुल ग्रीन कलर का. फ्रॉम शनीला, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, दैट्स नाइस. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. ओके जनाब, आप लोग पेज पे हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर, और वहां पे भी आप मैसेजेस कर रहे हैं. Right now we are moving on towards another track. The track is Soni Dharti by Khuram Jamshed. Amen. So milte hain is gaane ke baad. And Muhammad Ali. Is gaane ke baad milte hain. Hamare saath rahiyega, beautiful song.

0: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: 100 FM.
8: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.

number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie. बदगुमान मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

0: number on my fingertips. Catch your favorite number within no time.
1: No time.
0: Genie. बदगुमान मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा।

0: number on my fingertips. Catch your favorite number within no time.
1: No time.
0: Genie. बदगुमान मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा।

0: Right, जनाब वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर. और फरीदा बुरहानुद्दीन सुनी. फरीदा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे हो आप? तबीयत कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, तबीयत बिल्कुल ठीक. और कह रही है 14th अगस्त बेटा जी बहुत बहुत मुबारक. आपको भी बहुत मुबारक फरीदा जी. और मुझे कौमी गीत सुना दे. मैं कौमी गीत आए कहते नहीं, सलीस किस्म की उर्दू है कौमी. मैं भी सुनाता थोड़ी सी देर में. अच्छा गाना भी लिखा, इस परचम के साए तले हम एक. आए क्या बात है, आजकल जरा साए के तले एक हो नहीं पा रहे. मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है सही, लेकिन दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो एक हो जाए. और सिबल, सिबल जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. और आपकी फैमिली को बहुत सारा सलाम, दुआएं एफएम 100 की पूरी फैमिली को. और दिल से सलाम दे दिए भाई. वालेकुम सलाम आपको और सबको. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे. आमीन सुम्मा आमीन. और बिल्कुल सही बात है जनाब. और एक दूसरे का ख्याल रखना है हमने. ये खास तौर पे जो है ना वो आज का मैसेज है. महा यूसुफ जई भी आ गई है. कहनी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. एसएमएस आते रहे, बहुत शुक्रिया. और सुनकर हमेशा हैप्पी. अच्छा हैप्पी हो जाती है, ये मेरे ख्याल से लिखना चाह रही. बहुत शुक्रिया महा यूसुफ जई, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जनाब आशा भी हमें जो है वो सलाम कह रही है. और इसके अलावा तमाम सुनने वालों को सलाम. जश्न आजादी मुबारक. चलें जनाब और कल की आठ, यही टाइमिंग है भाई 9 to 11. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अच्छा जनाब अब टाइम चेक और फिर कुछ देर की ब्रेक है. भाई दोस्तों मैं आपको बताता रहूं, जरा आज के शो में और कल के शो में भी जरा ब्रेक का सिलसिला ज्यादा रहेगा तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना. तो दोस्तों टाइम चेक है और मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix.

0: बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।

0: हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
10: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
11: पाकिस्तान टेली
9: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, और बहुत सारी जो है ना जश्न आजादी, लेकिन नाम नहीं लिखा भाई, देखो नाम लिखा करो यार पहले। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, यूसुफ पापोस्ट, ये देखो ये हुई ना बात। तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची सबको भी सलाम दे दिए, 14 अगस्त की मुबारकबाद भी दे दिए। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम अयाज लाला जान, आपको और सब सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार सलाम। शकील रोशन, शकील भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। रियाज सुद्दीन बलबन थोड़ी देर पहले शिकायत कर रहे थे, जरा नेट पर प्रोग्राम नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो हमें सुन रहे हैं। नदीम भाई का भी थैंक्स कि उन्होंने फौरन इसको ठीक किया, और नेट पर इस वक्त जो है वो आप हमें सुन सकते हैं। तो रियाज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मैसेज कर दिया उन्होंने। अच्छा इसके अलावा भाई ये क्या है, बार बार ब्रेक, अपना शो बंद कर दो और घर जाके। नहीं नहीं, हमारे पैसे तो लगे नहीं ना, भले मैं थोड़ा बोलूं, लेकिन ये है कि हक हलाल के पैसे, ये नहीं कि बंद, हमारा काम है 9 to 11 यहाँ इस सीट पे होना, तो वो मैं हूँ, और नसीबों से नजर लगा दे, तू नजर लगा दे, बड़े दिनों बाद कोई आए ब्रेक थोड़ी से, पहले हमेशा इसी तरह प्रोग्राम चलते थे हमारे, लेकिन एक जमाना हो गया इस तरह का माहौल दिखे हुए, आज इतने दिनों बाद माहौल रख रहा है, लेकिन वो भी पसंद नहीं आ रहा यार। ब्रेक आनी चाहिए, बहुत जरूरी है ब्रेक। और इसी बात पर इंडिपेंडेंस डे और ये खूबसूरत सा ट्रैक, हाँ क्या बात है नैयर अनूर की।

क्या बात है जना, वतन की मिट्टी गवार है ना। अच्छा ये जितने इस दौर के जो तराने होते थे ना, कमाल, जब जब सुने आपको अच्छा लगता है। शायरी भी अच्छी, म्यूजिक भी अच्छी, और शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसलिए भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल के भी सही है, लेकिन ये वाली क्लास नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, शाहनवाज कराची से, शरफाबाद से। सर कल आएंगे हम आपसे मिलेंगे। मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल आइएगा कल यही टाइम 9 to 11। जो नाम रिस्पेक्ट के साथ रखा है आपके लिए, आप लेते हुए अच्छा नहीं लगता क्या? तो सॉरी, अब नहीं राइट करेंगे। खुश जीवे खत्म जाने जा। देखो ये जाने जा इस तरह के लिखते ना, वो अजीब लोग बोलेंगे यार, पता कौन आप इस तरह के नाम बड़े शौक शौक से पढ़ रहे, अच्छा नहीं लगता ना। महायूसर से समझा करें आप, ये पैकेज वाले नाम होते हैं। पैकेज के तो सारी सारी रात बातें कर रहे हैं, जाने जा तुम कहाँ आओ, ये वो वाला टाइम माहौल है। यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ तो सब फैमिली वैमिली होती है ना, तो जाने जा पे लोगों की हटरी होती है। भाई ये क्यों इतने फ्री क्यों हो रहे हैं? ओए होए, हमारे बड़े प्यारे दोस्त जिनका इंतजार था वो तशरीफ ला चुके हैं, और इनसे मैं बिल्कुल आपकी बात कराता हूँ, लेकिन जरा थोड़ी सी देर में, इंतजार के बाद, क्योंकि टाइम चेक है, और टाइम चेक के बाद 5 मिनट की ब्रेक दोस्तों नजर आ रही है, और ब्रेक के बाद जो है हमने जरा गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और वो ये तो इनकी भी आदत होगी सुन सुन के, ये भी एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से उड़ा रहे हैं। मैडम ये तो रोज का मामूल है भाई, सारी बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Shared bundles, वो भी discount पर. Subscribe करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz B5 fantastic bundle लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन discount से फायदा उठाओ. अपने favorite bundles पर बड़े discounts के लिए Jazz Cash है ना?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार. चाय बने बस.

0: 100 FM.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: Suno.

0: फैक्ट्स देखें, पूरी दुनिया में ऊपर नीचे कीमतें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें नीचे भी आई हैं, ऊपर भी गई हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है
1: कि मेरे आंसू आ जाएंगे अगर आपने कहा कि नीचे बंदे नीचे आ गए ट्रक के।
0: मुझे एक बात बताएं, क्यों कोई कीमतें बढ़ाएगा?
1: क्यों, अपने जेब नहीं भरनी उन्होंने? आवाम की जिम्मेदारी नहीं है?
0: नहीं, कहां से जेब भरेंगे, कैसे भरेंगे? देखें,
1: ये तो उनसे
0: जाए सर, अगर आपने बात करनी है तो प्लीज फैक्ट्स पे बात करें।
1: ये देखो, ये फैक्ट्स के चक्कर में आप करते
0: हैं।
1: मैं एक बात बताऊं, फैक्ट्स की बात ना करें। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आवाम का बुरा हाल हुआ। मैं उससे इतना एक्सपर्ट तो उस तरह का नहीं हूं।
0: तो फिर आप देखें हवा में, लेकिन आप मुस्कुरा भी रहे हैं। अब मुझे चेहरा बना के बता रहे कि देखें मैं इस तरह की बात जानबूझ के,
1: आप पता मेरी दोस्ती का फायदा उठा लेते हैं। मैं अब जब एक दिन पर्चे निकाल के और यूट्यूब से निकालू, जरा गूगल वूगल करूं, निकल आएंगी काफी सारी चीजें। लेकिन आवाम पे जुल्म किया हुआ है सर, आप मान लीजिए बात।
0: नहीं, किसने किया हुआ ये तो बताएं।
1: मैं नहीं बता रहा, बस
0: जुल्म किसने किया हुआ मुझे बताएं।
1: अच्छा, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैसेज भी आ गए हैं खुर्रम भाई, अगर इजाजत हो। सलाम है, सलाम, वालेकुम सलाम, इतने सारे सलाम फेर दिए। लाला जानी क्या है, फखर का तेरे बिना दिल नाल। अच्छा शकील भाई, मैं कोशिश करता हूँ, आप जरा खुर्रम भाई आवे तो मैं जरा वैसी फखर में हूँ कि ये आए हैं हमारे शो में, और जरा मैं अवाम की तरफ से जरा वो कर रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, जो उनकी शिकायतें हैं वो बात कर रहा हूँ।
0: अभी
1: शो करता हूँ ना, लोग बेचारे परेशान,
0: जी जी,
1: इतनी परेशानी होती है,
0: जी जी, बड़ी,
1: और उनका वो जिक्र करता
0: हूँ। जी, ये बिल्कुल सही बात है।
1: अच्छा, आप वो कह के कहते सही बात की आपने कि पेट्रोल कम होंगे, लेकिन वाकई कम हुए, लेकिन उसके बाद वो
0: आपको याद है, मैंने उस वक्त कहा था, उस वक्त जब 456 का पेट्रोल था,
1: बिल्कुल ऐसे,
0: और बिल्कुल ऐसे, और 520 का डीजल था,
1: डीजल था।
0: जब मैं यहां से आपको ये बता के गया था कि इंशाल्लाह कीमतें नीचे आएंगी, पाकिस्तान पीस प्रोसेस पूरा करेगा, पाकिस्तान जंग रुकवाएगा और आगे बढ़ेगा, उसके बाद कीमतें आपको पता है 297 का पेट्रोल आया था वापस, 309 रुपए का डीजल आया था, लेकिन अब जो है थोड़ा बढ़ गया।
1: अच्छा, एक सवाल आया,
0: दोबारा जंग शुरू।
1: सुने सुने, एक सवाल, वो संजीदा कह रही है, इनका ताल्लुक नून से तो नहीं है? ये पूरा कायदा इन्होंने पढ़ा हुआ है, नून से क्या पूरे अलिफ बे से?
0: मैं बता देता हूँ, ये क्लियर करना चाहिए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं प्रोफेशनल हूँ, प्राइवेट सेक्टर से गया हूँ और मुल्क की खिदमत करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एडवाइस की जाए जो कि ओवरऑल कंट्री की मईशत की बेहतरी के लिए हो।
1: मईशत अगर हमें नजर आ रही हो, किसी ने कहा ना वजीर खजाना, तो खजाना ही नहीं है तो वजीर क्या का बनाया हुआ है? इस ये भी एक बहस है, इस पे जरा आप रोशनी डालें। मेरे
0: यार, मैं तो नहीं
1: हंसा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि खजाना ही नहीं है, तो भाई खाम खा के पैसे दे रहे हैं उस वजीर को,
0: क्यों नहीं है? देखें, खजाना नहीं, पैसे किसको मिल रहे हैं? वजीर खजाना हो या कोई भी हो, पैसे नहीं ले रहे भाई।
1: अच्छा,
0: हाँ, लेकिन ये बात नहीं है पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कोई भी प्रोफेशनल काम करता है।
1: तुम्हारा दिल मानता है कि वो नहीं ले रहे? कोई ना कोई तरीका तो और जुगाड़ लगाई। हमारी बात होती है हवा में, इनकी होती है तैरती हुई जा रही है, हमारी हवा में जा रही है। वाह वाह वाह वाह, ऐसा नहीं करो।
0: मैं आपको बताता हूँ, होता यह है कि जो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस होती हैं उनकी एक तनख्वाह जरूर होती है, और कोई अपनी मर्जी से लेता है कोई नहीं लेता। तो अगर वजीर खजाना हो,
1: अच्छा किसी ने ना किसी रिश्वत है ना, उसका नाम भी उन्होंने तोहफा रखा हुआ है, तो वो तोहफे इतने सारे ले लेते हैं, तो वो ये वाली देखो तनख्वाह की जरूरत
0: नहीं है।
1: अब बोलो हवा में, फिर बात में।
0: अगर आपको टीवी प्रोग्राम की तरह बात करनी है तो आई कैन डू दैट, ठीक है? अगर आपको अगर आपको हवा में तीर चलाने हैं तो आई कैन डू दैट, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने जो भी हमारे सामईन है इनके साथ थोड़ा अच्छी चीजें हम बात करें, और जो बेहतरी है वो करें और आगे बढ़ें और मिलके आगे बढ़े। आज दिन ऐसा है, रात ऐसी है, जिसपे मैंने जैसे शुरू में कहा,
1: अभी आज के दिन
0: कैपेसिटी में
1: सुनो सुनो, हम आज के दिन ही ये तहिया करें ना आम आवाम का, हमने इतना कोई सत्यानाश नहीं करना, उनका हलवा नहीं निकाल देना, महंगाई से उनका बुरथा निकल गया। एक बात बताओ, एक आदमी जो 40,000 आज कमाता है, वो बेचारा कैसे अपने घर का किराया भी दे, पेट्रोल का भी खर्चा करे, बच्चों को भी पढ़ाए? ये एक मुझे बताएं, कोई बनाने वाले जो ये बनाते हैं सारी चीजें, वो इस चीज का कोई सोचते हैं इस बारे में?
0: बिल्कुल सोचते हैं। देखिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं सोचता, ये हम क्यों सोचते हैं?
1: चलो, सोच रहा तो उसने क्या सोचा?
0: मैं ये तो कह रहा हूँ कि बेहतरी करे, पर कैपिटल जिसे कहते हैं ना, आप जिसे कह रहे हैं कि एक इंसान जो फीकस आमदनी होती है, एक आम आदमी कितना कमा सकता है, मैं तो यही कहता हूं, देखें स्टार्ट जो इंसान करे ना, वो एक गरीब आदमी से अपनी पॉलिसी स्टार्ट करे। कि मिसाल के तौर पे कि गरीब आदमी मिनिमम कोई 10, आप तो 40,000 की बात करें तो कोई 20,000 भी कमाता हो
1: बेचारा, ठीक है? बीच में, हाँ,
0: तो देखें ये तो आप रिलेटिव बात करें ना कि यार 40 कमाते, मैं तो कहता हूँ कोई 20 कमाता उसका क्या होगा?
1: ठीक है,
0: या जिसके पास नौकरी नहीं है वो क्या करता होगा? तो पॉइंट ये है,
1: एक सवाल,
0: ये सारी देखें रिलेटिव वो सेगमेंट्स है ना जिसपे काम करने की जरूरत है, और देखें इसमें सबकी जो है वो
1: साल हो गए पाकिस्तान बनने में, अब तक मुझे बताएं
0: 79 ये भी नहीं पता कि
1: 80 कर लें,
0: 80 ना कर लें,
1: 79 हो गए ना,
0: 79 था ना ये हमारी,
1: अच्छा 79 हो गई
0: यार, आप तैयारी करके आए नहीं?
1: तो मैं वैसे ना क्या हूँ, तैयारी की मैंने। अच्छा मुझे बता, 79 80 कर लें, बिल्कुल सही समझ में आया, 80 एक साल हो गया, ठीक है
0: जी।
1: अभी तक वो प्लानिंग ही नहीं हो पा रही गरीब
0: ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
1: जिसकी तनख्वाह जो है वो करोड़ों में है उसको सारी फैसिलिटी दी हुई है कि पेट्रोल भी फ्री तो गैस
0: ऐसा नहीं, ये भी गलत है
1: जो बेचारे। अच्छा ये भी गलत है।
0: हाँ मैं वो तो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है।
1: एक मिनट ये रुके, ब्रेक का टाइम हो गया, जरा ब्रेक बहुत जरूरी है वरना तो हम ब्रेक हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: इस मुल्क की पासबानी, निगरानी और तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करने का और आजादी की खुशियां मनाने का दिन, आजादी की खुशियां मनाने का दिन कल 14 अगस्त यौम आजादी पाकिस्तान।

0: दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: Active,
7: yummy,
6: adorable, zabardast.
7: प्याज तो सुनो यार।

0: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं। अच्छा खुरम भाई, वैसे हमारी दोस्ती तो वैसी है, ऐसा ना हो शो के बाद आप बोलने चल बेटा मैं तुझे जानता नहीं कौन हो तुम, ऐसा सीन ना हो जाए। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है तो इसी मैं जरा फ्रैंक होकर इनसे बात कर लेता हूँ और आवाम की। लेकिन कुछ कुछ गलतियां नो डाउट सही कह रही है, आवाम की भी हैं और हमें भी एहतजाज करना चाहिए। कोई गलत चीज है हम जाएं लोगों के जहां जो इदारा है उसके सामने जाके हम जो है वो रिक्वेस्ट करें।
1: मैं ये समझता हूँ अयाज भाई आप जो बात कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी गवर्नमेंट में काम करता है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जवाब भी देना है और उसे सही चीज बतानी भी है और आगे जो है वे फॉरवर्ड भी बताना है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्या बेहतरी आ सकती है। तो आप ये ना समझें कि जी आप सवाल नहीं आपने करना है क्योंकि ये माई सेल्फ बींग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक ऑफिस होल्डर मैं इसका लायबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज का।
0: ठीक बात सही बात की। अच्छा दूसरी बात यह है कि खुरम भाई जो है ना वफाक से इनका ताल्लुक है तो बाज लोग आके पूछ रहे होते हैं भाई इलाके में जो है वो पानी नहीं आ रहा हमारे वो टैंकरों से आ रहा है गैस नहीं आ रही दो घंटे का ये वो टाइमिंग दी हुई
1: सेहत नहीं है तालीम
0: सेहत नहीं है तालीम नहीं। तो ये इनका डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन हम क्योंकि आप क्योंकि उस इदारे से हैं उस हुकूमत से हैं इसलिए भी लोग आके जरा आपसे
1: नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है। देखिए मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि देखिए वो आपने कहा ना कि इनका ताल्लुक नहीं है, इसमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो बेसिक्स है ना सारी कि आपको तालीम मिलनी चाहिए आपके बच्चों को बेसिक सेहत मिलनी चाहिए उसके अलावा आपको साफ पानी मिलना चाहिए आपकी गलियां ऊंचे सारे रोड्स आपके बनने चाहिए साफ होने चाहिए क्योंकि आप टैक्स देते हैं। ये 2009 में आज भाई आपके सामने इनकी इन्फॉर्मेशन की तो बहुत लोगों को पता भी होगा ये
0: सही सही
1: कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना और इसके ऊपर जो पैसा मिलता है वफाक से वो सूबों को मिल चुका है, ये सूबों के हिस्से में आ चुका है ये काम कि सूबे अपने शहरों को जिलों को गांवों को देहातों को और शहरी आबादी सबको डेवलप करें और ये सारे बेसिक्स प्रोवाइड करें। सूबा एक बस पॉइंट बोलूंगा 100 रुपए में से तकरीबन 2/3 हिस्सा सूबों को दे देता है वफाक
0: तो ये
1: डेवलप करें ना
0: दे चुके
1: हर साल देते हैं।
0: चले जी खुर्रम भाई उसी डिपार्टमेंट से
1: कराची को कितना पैसा मिलता है
0: अब बताइए ना जरा।
1: अरबों रुपए मिलते हैं कराची को भी डेवलप करने के लिए ठीक है। क्यों कराची को क्यों खासतौर पर वफाक देता है वो इसलिए कि वफाक ये सोचता है कि कराची सबकी माँ है
0: सही
1: कराची से हर बंदा आता है कराची हर बंदा आता है डिफरेंट शहरों से तो इसलिए वफाक का ये काम है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची में काम करने के लिए
0: सही सही
1: रहने के लिए रोजगार के लिए तो कराची को भी सपोर्ट वफाक डायरेक्ट भी करेगा और जिस प्रोविंस में जिस सूबे में वो शहर है उसका तो वो काम ही है।
0: बिल्कुल
1: तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमारी हमने किसको क्रिटिसाइज करना है।
0: गलती आपकी भी है आप जो है ना अरबों रुपए दे रहे हैं तो वो अरबों को ही दे रहे हैं तो ये कुछ कोशिश करें कि जरा पैसे जरा अरबों में ना जाए थोड़े थोड़े करके नहीं ताकि
1: अरबों में तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए।
0: मेरी बात आप समझो जो अरबों अभी सऊदिया में दुबई में पैसा
1: क्या करता है वफाक कर्जा भी लेता है ना उसमें से भी पैसा जो है वो सुबह।
0: लेकिन यार कोई एक बात मुझे बताएं खुर्रम भाई कुछ वो चेक एंड बैलेंस नहीं है इन लोगों पर।
1: अब देखिये बात ये कि ये कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं ना
0: जी
1: वो उसके अंदर एक चीज तय हो गई कि जी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जैसे आजकल बात भी हो रही है कि हमारे चार सूबे हैं चार सूबों के अलावा वो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ये सब भी हैं तो इन सबको फंड्स मिलते हैं कि जी आप काम करें। देखें होता क्या है हर कोई वफाक पे बैठ के काम नहीं कर सकता ना वफाक पे बैठ के किसी को क्या पता कि आपकी गली में क्या हो रहा है।
0: बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात।
1: इसका क्या हल होना चाहिए सूबे के पास हो और सूबे क्या करे सूबे ने जो नहीं किया सूबों ने वो ये कि अपने शहरों और जिलों तक लोगों को पहुंचाएं पैसा भी पहुंचाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें कि अपनी गलियों कुचों को आबाद करें भाई पैसा लें उनको डेवलप करें और कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे शिकायत करें।
0: खुर्रम भाई को बिल आखिर मैं इस बात पे कायल कर चुका हूं कि आप तो पैसे दे देते हैं लेकिन जिनको पैसे दे रहे हैं ना वो बिल्कुल काम नहीं करते।
1: अब देखें
0: और इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं हमें भी जाना
1: है आवाम को क्या करना है हमें क्या करना है। देखें मैं भी कराची से हूं ना हमारा काम यह है कि हमें सही जगह पे क्रिटिसाइज करके उसे सही जगह पे उसको कहना है कि जी तू मेरे सूबे का या तू मेरे शहर का या तू मेरे गली कूचे का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है मैं टैक्स का पैसा यहां देता हूं तो मेरे पानी क्यों नहीं साफ आता क्यों मेरे पास जो है वो बच्चे नहीं मेरे पढ़ पाते क्यों मेरे पास सेहत ठीक नहीं है क्यों मेरे पास स्कूल नहीं है बच्चे का ये सब चीजें हमें पूछना किससे जिस सूबे की हुकूमत है या जिस शहर
0: में ये है कि उसे पूछें कैसे
1: नहीं पूछें कैसे या ये भी मैं आपको बताऊं
0: ये मैं बता रहा हूं मेरी पूरी बात बोल रहा
1: हूं खाना कैसे खाते हैं
0: मैं क्या बात पूछ रहा हूं पूछे कैसे हम वो जो एक अभी वो रजा साहब का जो अभी जो बाकिया हुआ है मीर रजा साहब का
1: जी जी
0: पुलिस के जो जो हरकत उन्होंने की
1: हां तो वो किसके अंदर आ
0: देखिए आप
1: आपने देखा
0: आप सुने कि वो एक मासूम आदमी को वो खुदकुशी पर तो ले कि भाई आप मान
1: बहुत अनफॉर्चुनेट बहुत
0: इतने अफसोस की बात है जो जिन्होंने इंसाफ देना है जिन्होंने कातिलों को पकड़ना है वही उन्हीं के साथ मिल गए। تو آپ بولنے کے جائیں بات کریں کیسے بات کریں.
1: دیکھیں عوام جو ہے نا, عوام اگر عوام ایک ہوتی ہے نا, ایک ہوتا ہے.
0: ویسے دوستو اب ہونا پڑے گا
1: ایک. آج آزادی کا دن ہے نا, آج اور کل جو آ رہی ہے,
0: آج کچھ ذرا
1: میں نے کمٹمنٹ شروع میں کیا کہی کہ آپ ایک کمٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے اس سال ایک اچھا کام یہ کرنا ہے, اور اگر ہم یہ کلیکٹولی کر لیں یعنی کہ مل کے کر لیں تو کیا چیز نہیں ہو سکتی.
0: بالکل ایسا,
1: بس عوام ہی چینج کرتی ہے.
0: میں ایک بات بتاؤں, عوام میں ہی تھوڑی سی نا یونٹی کی مجھے تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت ساری کمی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ سارے ایک ہو جائیں تو کافی بہتری آ جائے. دیکھیں نا آپ, پانی کے لیے جو ہے پانی کے پیسے ہم ہر سال دیتے ہیں لیکن پانی ہم ٹینکر سے منگوا رہے ہیں. گیس کے پاس پیسے پورے لے رہے وہ, لیکن گیس دو دو گھنٹے کر کے آ رہی. بےچارے عوام خواتین اتنی پریشان. وہ اس کے علاوہ سیکیورٹی کا یہ حال ہے, گارڈ رکھے ہوئے.
1: سر میں آپ کو بتاؤں, ٹرانسپورٹ تک, ٹرانسپورٹ روڈ سے لے کر, ٹرانسپورٹ سے لے کر اسکول, ہر چیز, اسکولنگ ہو گئی, ہیلتھ ہو گئی, ہر چیز صوبوں کے پاس ہے. صوبوں نے اپنے شہروں کو دینا ہے, اپنے دیہاتوں کو دینا ہے تاکہ لوگوں کے دروازوں تک یہ بہتری پہنچ سکے.
0: ٹھیک,
1: تو وہ دیکھیں اب وہ تو ہمیں, ہمارے ہمیں یہ سوچنا ہے نا کہ ہمارے کرٹیسزم ہو یا ہماری جو استدعا ہو یا ہماری جو یہ سب پوچھنا ہو یہ کس سے پوچھنا ہو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
0: ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب تھوڑے سے ذرا میسج بھی قرآن میں شامل کرنے. محمد نہیں, ایوب آفریدی بھائی کہہ رہے ہیں نائس آیاز, خوش رہیں, جیت رہے ہیں. اور سبا گل, مشک اور مہانور, ہنا کو اور تمام سننے والوں کو سلام, جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی سر بہت بہت جشن آزادی مبارک. اچھا جی گیسٹ کو سلام. ویسے تو کل ہے 14 اگست, اور تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک. چلیں جی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اچھا جی چلیں جی, ذرا ایک ٹریک کے جانے پڑتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور گپ شپ کریں گے خرم بھائی سے.

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर, और खुर्रम शहजाद आज हमारे साथ हैं। और गवर्नमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों के इतने सवाल हैं, लेकिन वो ये है कि यार आप तो रोजाना इस तरह लोगों को फेस करते होंगे, ये भी वो होती हो
1: तो इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अपने लोग हैं ना, अपने लोग हैं, इनकी बेहतरी के लिए।
0: मैं अभी देखा, मैंने देखा आपको जिस तरीके से आप जो है वो लोगों को डील करते हैं, थोड़ा मैं मुतासिर हूँ आपसे यार। वो कहते हैं ना बंदा डीट होना चाहिए, माशाल्लाह क्वालिटी है, लेकिन ये बात
1: है दोस्त हैं तो ऑब्वियस ऐसे
0: नहीं होना भी चाहिए। हाँ। मतलब थोड़ा बंदे को, लेकिन यार इन लोगों के मसाइल का हल होना चाहिए, ये
1: होना चाहिए।
0: मैं और आप भी यही अंदर से तो यही
1: देखिए, सबसे बड़ा जो जैसे कहते हैं ना रिफॉर्म, इस्तलाहात होती है ना, इस्लाहात होती है बहुत सारी,
0: इस्लाहात
1: यानी कि किसी चीज को बिल्कुल ठीक करना या
0: प्रॉब्लम क्लास ले हमारी तुम में काम करो
1: जी, तो उसको उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ही यही है जो मैंने बात की कि लोगों के घरों तक, उनके दरवाजों तक सर्विस डिलीवरी हो,
0: उनको मिले, अच्छी बात है,
1: ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को अपने साथ टैक्सेस और अपने जितने फंड्स होते हैं वो दिए हैं डेवलपमेंट के लिए, लेट्स से
0: सही बात
1: कि अपने लोगों पे लगाएं। अब सूबों का काम यह है कि शहरों को अपने पैसे दे, कराची को पैसे दे, देहातों को पैसे दे, वहां पर रिस्पांसिबिलिटी दे, लोगों को कहे, वहां के लोग हों, उनके दरमियान में जो लोग होते हैं
0: ये जो आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स, ये इनको पैसे दिए रिफॉर्म्स बनाने के लिए कराची को,
1: मैं कह रहा हूं टैक्स का हर साल पैसा आता है,
0: लेकिन ये रिफॉर्म अब नहीं हो रहा, सिर्फ पोल्ट्री फॉर्म बन गया ये अब कराची में। आपको बता रहा हूं जो सूरत हाल बनी हुई है कराची की इस वक्त,
1: बिल्कुल नहीं तो इंशाल्लाह ये होपफुली आप देखेंगे कि देखें लोग आउटकम क्या होता है, लोगों को अगर नहीं कुछ मिल रहा जो डिजर्व करते हैं ना, इस मुल्क के शहरी डिजर्व करते हैं,
0: बिल्कुल ऐसा ही
1: कानूनी तौर पे डिजर्व करते हैं,
0: तो
1: बेसिक तनख्वाह, बेसिक जो है वो एजुकेशन और बेसिक हेल्थ मिले और बहुत सारी और चीजें मिले, तो ये हमारा हक है, तो हमने अपना हक करना है, मांगना है, कहना है कि जी आप इसको करें पूरा, क्योंकि जो सूबाई गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी और वो अपने नीचे की गवर्नमेंट नहीं क्रिएट करेगी शहर की या गांव की,
0: अच्छा ये बताओ
1: ये नहीं चीज
0: होगी। अभी स्कूलिंग की बात है, इसमें खास रखा होता कि यहां पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ने नहीं देना, इनमें शऊर ना आ जाए, इस चीज का खास ख्याल रखा हुआ मेरे ख्याल से, है ना?
1: नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैट्रिक तक की तालीम तो आपकी कानूनी तौर पर जो है वो फ्री है, और बेसिक
0: स्कूल में ईमानदारी से बताओ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगे इस वक्त जो गवर्नमेंट के स्कूल है?
1: मैं तो बिल्कुल पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहूंगा अगर
0: बच्चा तो उसे कुछ और ही निकलेगा वो जो अभी इस वक्त जो आ रहा
1: है। मिसाल दे रहा हूं ना कि मैं अपने स्कूलों में और कॉलेजों में और अपनी देखिए मैं तो यहीं से पढ़ाऊं ना, मैं तो कहीं बार से नहीं पढ़ के आया,
0: मगर एक बार प्राइवेट स्कूल से पढ़ा
1: बेसिक, नहीं हाँ प्राइवेट स्कूल से पढ़ाऊं, लेकिन मैं तो उस प्राइवेट स्कूल से पढ़ाऊं जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के हिसाब से ही था,
0: जो पीला स्कूल है गवर्नमेंट का उसमें जो सूरत हाल अब है,
1: प्राइवेट सेक्टर में भी तो बहुत सारी कैटेगरीज है ना, एक तो इलीट प्राइवेट सेक्टर है आपको पता है,
0: ठीक है,
1: मैं तो इलीट स्कूल से नहीं हूं, आपको
0: ठीक
1: है, आपने पढ़ा है स्कूल गए आप?
0: मैं एक दफा गया था,
1: एक दफा गया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कॉलेज स्कूल अपने हॉस्पिटल हैं इन सबको डेवलप करने का एक तरीका ये कि हम अपने बच्चों को यहीं भेजें, जब हम देखेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है
0: तो वो बच्चा फिर पत्र करेंगे, कुछ पढ़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि माहौल पढ़ाई का ही नहीं वहां पे,
1: नहीं मैं कह रहा
0: हूं ना टीचर आ रहे हैं वहां पे,
1: एग्जैक्टली यही सवाल, यही पॉइंट है कि हम उसको ठीक करेंगे।
0: सिंध में तो ऐसा भी देखा है कि वो अस्तबल बने हुए हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ है, अब मुझे बताइए क्या किया जाए इस पर?
1: सही बात है, ये अनफॉर्चुनेट, मैंने आपको कहा ना कि देखिए सिंध का या किसी भी सूबे का ये काम है अपने लोगों के लिए डेवलप करना,
0: लेकिन बहरहाल अफसोस ही हो सकता है, और हम सिर्फ बातें कर करके जो है ना वो खुश रहते हैं, लेकिन अब क्या करें दोस्तों। तो और जनाब इस वक्त जो है वो क्या, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा गाना आप सुनना पसंद करेंगे कि नहीं सुनना पसंद करेंगे?
1: बिल्कुल करें, बिल्कुल लगाएं, आप सुनाएं हमें, सुनाएं,
0: चलें जनाब एंजॉय करें और साथ साथ मैसेजेस करें 3636 पर।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: हाय हाय हाय,
1: क्या बात है।
2: ये हमारे खुर्रम भाई की पसंद है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। वाकई यार बहुत पुराना, लेकिन जब भी ये प्ले करता हूँ तो यार दुबई की याद आती है मुझे। वैसे पहले जनाब बातचीत हो रही है खुर्रम शहजाद से। खुर्रम भाई जो है, खुर्रम भाई अपना तारीफ जरा सही से करें, क्या क्या है आप, किसके मशीन है, क्या करते हैं जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: देखिए मैं वजीर खजाना जो है पाकिस्तान के फेडरल के उनका मशीर हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर के मशीर होते हैं, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के मशीर होते हैं।
2: ठीक है।
1: एडवाइज करते हैं खास एरियाज पे, और उस पे फिर उस एडवाइस को कन्वर्ट किया जाता है पॉलिसी में, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसमें ऑफकोर्स ये ख्याल रखा जाता है कि एक आम आदमी का फायदा हो।
2: इस पे म्यूजिक म्यूजिक,
1: क्या बात,
2: आम आदमी का भी ख्याल रखते हैं आप लोग। ये एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छी बात की आपने भाई। देखिए हम जो है ना गिला शिकवा तो कर रहे हैं खुर्रम भाई, आपने दिल पे कोई बात नहीं रखनी, ये मैं आपको बता दूं पहले में क्योंकि लोग काफी परेशान और नाराज भी, तो लिहाजा अभी भी असगर साहब जैसे आए। असगर साहब मैं माजरत, आपकी फोन कॉल रिसीव नहीं कर सक रहा क्योंकि इस वक्त क्योंकि खुर्रम शहजाद आए हुए हैं, फुल सिक्योरिटी में हमारा स्टूडियो। अच्छा भाई अयूब आफरीदी कह रहे हैं नाइस, आप इतने सच्चे और मुश्किल सवाल में। अरे नहीं सर, का दोस्ती भी तो है ना यार, खुर्रम भाई से दोस्ती हमारी, इस वजह से भी जो है ना हम इनसे हर बात दिल की कह लेते हैं और खुर्रम भाई माइंड नहीं करते, ये इनकी एक इतनी प्यारी बात है। अच्छा खुर्रम भाई बाहर जाते होंगे लोगों का भी ऐसे ही रिएक्शन होता होगा, जब आपने बाहर निकलने छोड़ दिया आपके भाई।
1: ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें कोशिश यही रहती है कि आप वो बात करें जो कि फैक्चुअल है, और जहां पे चैलेंज है, जहां पे एक फैक्ट है कि जी ये चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको एक्सेप्ट करें। देखिए एक जो पहला कदम होता है ना बेहतरी की जानिब, वो ये होता है कि आप एक्सेप्ट करें कि कोई चीज खराब भी है,
2: सही,
1: तभी आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप अगर ये सोचते रहेंगे तो सब कुछ ठीक है और बस

0: इफेक्ट हो गया है और
1: तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि हम आवाम कितने परेशान है।
0: देखिए मैं आपको
1: इतना वो कह रहे हैं कि हम सिस्टम ही समझ से बाहर है, ये क्या करें।
0: आप जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने सामाइन को भी जरा आपके बारे में बताता हूँ। जैसे आप बैठे हैं माशाल्लाह अच्छे अटायर में, टी शर्ट्स और जींस में है और बहुत जबरदस्त।
1: पहले मैं कोट पहना करता था,
0: अब बीच में आप इंटरव्यू नहीं।
1: पहले मैं कोट पहना,
0: आप जिस तरह यहाँ एसी वाले एनवायरमेंट में बैठे हैं और अभी सामने आप खजूरें खा रहे हैं माशाल्लाह से,
1: और
0: बिल्कुल दुबई का टच है सारा, और आप जो घड़ी आपने पहनी है माशाल्लाह से, ये कोई अच्छी खासी महंगी होगी। आपने शूज बड़े अच्छे पहने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इतना अच्छा
1: चापा पड़ो,
0: इतना अच्छा आप कर रहे हैं और आप जो है उठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, आप तो शुक्र अदा कर रहे हैं।
1: मैं एक बात
0: मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ।
1: मैं इस सीट पे हूँ ना
0: जी,
1: इस वक्त मैं अयाज, वो वाला अयाज नहीं हूँ मैं, आवाम को
0: वो वाला
1: रिप्रेजेंट,
0: वो वाला
1: जैसे आपने जिसका नक्शा खींचा।
0: आप पॉलिटिशियन बन गए?
1: नहीं नहीं, जो नक्शा खींचा है
0: हंस क्यों रहे हैं?
1: मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो मैं इस वक्त बैठा हूँ आम लोगों की बात, मासेस की बात।
0: मर्सिडीज में बाहर आए तो
1: ये ज्यादा हो गई सरकार, ये ज्यादा हो गई। मर्सिडीज
0: नहीं वाली आपके पास?
1: ना ना, मर्सिडीज बिल्कुल नहीं। इसी बात पे ब्रेक हो जाए ताकि जरा हमारे पास मर्सिडीज ज्यादा। दोस्तों ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: इस मुल्क की पासबानी, निगरानी और तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करने का और आजादी की खुशियां मनाने का दिन, आजादी की खुशियां मनाने का दिन। कल 14 अगस्त यौम आजादी पाकिस्तान, यौम आजादी।

0: पानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।

0: हाय हाय तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान।
1: क्या याद है आपने दिला दी।
0: स्कूल याद आ गया कसम से।
1: आप स्कूल में थे सर?
0: मैं उस वक्त स्कूल में था जब ये गाना हिट हुआ था सुहेल राणा वाला प्रोग्राम।
1: अच्छा मुझे याद नहीं कि मैं था नहीं सर।
0: बानी थे उस
1: नहीं मैं था
0: नहीं थे। दरअसल जनाब खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। खुर्रम भाई से हम बातचीत कर रहे हैं और महंगाई के हवाले से तो लोग इनसे पूछते ही रहते हैं। हम भी रिवायती सवाल जाहिर करेंगे इनसे।
1: ऐसे आजमी आपके लिए कैसी महंगाई? आप तो जो है
0: आप मुझे ऐसा लग रहे हो कि मैं अलहनियान अलबनियान का बेटा हूँ। कौन
1: आज मैं अगर आपकी एक तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दूं
0: सर नहीं करें सर। मैं इस वक्त बहुत सिंपल सादा तबीयत का आदमी हूँ और मैं यहाँ इस पर जो बैठा हूँ ना तो मैं आम आदमियों की बात ज्यादा करता हूँ। ये मैं आपको मेरे कपड़े ना देखें आप माशाल्लाह कुर्ता आपने भी जबरदस्त किस्म का सिलवाया
1: तो कुर्ते और शलवार कमीज वाले लोग हैं
0: सर। आप ये पाशा के और बॉस बॉस की ये तो करोड़ों में तो ये सूट कम नहीं होंगे।
1: आपकी आंखें भी झगड़ा खराब कर
0: दी। मर्सिडीज मेरी आपने खड़ी कर दी मैंने कुछ कहा आपको
1: वो तो है ना
0: नहीं करे यार ऐसा नहीं करे। आजकल तो
1: बाइक भी आई आज
0: बात सुने आजकल तो वो साइकिल अगर हम रख रहे हैं बड़ी बात है क्योंकि जो पेट्रोल है ना ये काफी खतरनाक हो
1: गया। अच्छी बात है वैसे आपको ईवी की तरफ जाना चाहिए।
0: जाने लोग
1: उसमें इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप उन्हें टैक्सेस कम किए
0: जरा बताए ना इस पर रोशनी डाले।
1: पाकिस्तान का ये प्लान है कि 2029 या 30 तक
0: सही
1: 30% अपना इम्पोर्ट बिल यानी कि हम जो फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं ना यहाँ 85% या 90% तक हम जो भी यहाँ पे तेल यूज करते हैं पेट्रोल यूज करते हैं डीजल यूज करते हैं इसका कोई 85-90% बाहर से मंगवाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और उसका पता है कितना बनता है कोई 20 से 25 अरब डॉलर बनते हैं तो 5 अरब डॉलर हर साल कम करना है
0: 30 अरबों की वजह से ना हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ।
1: और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना क्योंकि माहौलियाती
0: आबादी
1: बहुत ज्यादा पाकिस्तान से अफेक्टेड है तो इस तरफ गवर्नमेंट ने बड़े टैक्सेस को बिल्कुल 1% कर दिया और इम्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा इंसेंटिव हैं।
0: अल्लाह करे
1: सोलर पर देखें पाकिस्तान ने सोलर पे
0: क्या लेकिन सोलर पे भी वो धड़का लगा रहता है कभी टैक्स लगा देंगे कभी ये कर देंगे कभी लाइसेंस कर देंगे लेकिन हुआ नहीं ये
1: कुछ भी नहीं है। आपने कहा भी था मुझे लेकिन बजट आपने किया बजट में सैलरी क्लास को जो है कमी की।
0: आपकी पेट्रोल वाली बात से मुझे याद लोगों के जहन में आजकल ये है कि यार ये जो भी जंग वंग हुई है ईरान के साथ दोस्ती बढ़ गई है जरा गर्मजोशी आ गई है तो ये इनसे क्यों नहीं पेट्रोल ले लेते इनसे तो यूं समझो कि मुफ्त में मिल रहा है ये वाली स्टोरियां होती है तो यार जी कहां तक इस पे जरा रोशनी डाले।
1: बड़ा अच्छा सवाल किया एज भाई आपने। मैं आपको ये बताता हूं कि देखें ईरान जो है ना वो डीजल एंड पेट्रोल बहुत कम मिकदार में बनाता है बहुत कम ना होने के बराबर अपने सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए वो करता है वो मुश्किल से। उसमें प्रॉब्लम ये कि उनके पास जो रिफाइनरीज है ना जो ये जो खाम तेल होता है इसको वो कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल लाइट स्पीड डीजल में या केरोसिन में मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं या जहाजों के जो फ्यूल में ये सब ईरान बहुत मुश्किल से करता है क्योंकि उसके पास रिफाइनरीज नहीं है। आपको पता है 40-45 साल से वो सैंक्शन कंट्री रहे हैं उन पर पाबंदियां लगी रही हैं तो उनके उस तरह से सरमाकारी नहीं हुई इस वाले सेक्टर में जो कि खाम तेल को कन्वर्ट कर सके बेहतर फ्यूल में ठीक है पेट्रोल या डीजल में। इसलिए वहां से नहीं आती बहुत सारी चीजें। हाँ आता है थोड़ा बहुत लेकिन आपने देखा होगा उसकी क्वालिटी क्या होती है बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी होती है ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके रिफाइनरीज ठीक नहीं है इसलिए आप ये कह रहे हैं ना वहां से मंगवा लें ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कुवैत से डीजल मंगवाता है
0: जनरली बात है
1: यूएई से जो है कुवैत से मंगवाता है और जो खाम तेल है वो यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा पार्टनर है। आप देखो ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तभी यहां पे शॉर्टेज नहीं मिली आपको जबकि इंडिया में शॉर्टेज हुई है एलपीजी पे और दूसरी चीजों पर घरों पे खाने जो है कम बनना शुरू हो गए थे क्योंकि एलपीजी सारी ईरान से आती है हमारी भी आती है बाय रोड आती है उनके यहां क्योंकि समुद्र के रस्ते आती है तो वहां पर बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ईरान के साथ ट्रेड करना बिल्कुल की जा सकती है और ईरान के थ्रू पूरे यूरोपियन ममालिक तक जा सकते हैं। पता है सेंट्रल एशिया एंड यूरोप की तरफ हम जा सकते हैं अफगानिस्तान को बायपास करते हुए जा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह कि ईरान पे अभी भी पाबंदियां जो है आहिस्ता आहिस्ता हटेंगी जब ये मुआहिदा सही मानों में जो है ऑपरेशनलाइज होगा जो अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह होगा दोबारा होगा लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है ईरान के थ्रू ईरान के साथ भी ईरान के थ्रू यूरोपियन मालिक के लिए।
0: मैं तो कह रहा हूं उनसे दोस्तियां हो जाए तो कितना महंगाई के पे कंट्रोल हो जाएगा और कारोबार अच्छा होगा
1: सबसे इम्पोर्टेंट
0: मौका मिलेगा।
1: सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड का रूल होता है आपके जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा करते हैं नहीं फड्डा नहीं हमारा हम तो अभी तो दोस्तियां देखें पाकिस्तान अयाज भाई पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया का जिसकी चाइना से भी दोस्ती है जिसकी रशिया से भी दोस्ती है जिसकी सऊदी से भी दोस्ती है जिसकी तुर्की से भी दोस्ती है और जिसकी अमेरिका से भी दोस्ती है।
0: ये बात है
1: दो कंट्रीज जो है आइसोलेटेड है इस वक्त अपनी हरकतों की वजह से इंडिया एंड इसराइल
0: बिल्कुल
1: हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको हिदायत अल्लाह की जात दे और वो बेहतर की तरफ जाए मगर आपको पता मुश्किल लग रहा है बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हम पाकिस्तान ने कितना बड़ा नाम अचीव किया आप देखें
0: वॉर
1: के साथ लास्ट इंडिया के साथ क्या किया
0: बिल्कुल
1: 6 जहाज गिराए इनफैक्ट आप ट्रंप से पूछे तो 11 तक पहुंच चुके और उसके अलावा फिर हमें
0: इतनी बड़ी पैसा पीते हैं कि वो
1: दुनिया की जो इतनी बड़ी वॉर हमने रुकवाई ये सबसे بڑی چیز ہے کہ دنیا کو نقصان بچایا, دوبارہ شروع ہوئی لیکن دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں سب سے بڑا یہ کہ ریجن میں ایک نیا معاہدہ ہوا ہے جس میں سعودی عربیہ اور ترکی ساتھ آ کے کھڑے ہوئے پاکستان کے, آپ نے دیکھا ہے نا,
0: ابھی
1: امپیکٹ ہوا. اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اور بھی کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کی لیڈرشپ میں جو ہے یہ سارے کنٹریز ریجنل جو ہے وہ اس معاہدے میں آ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں اور سارے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں.
0: کیا بات ہے جناب, تو یہ جو ہے
1: دیکھیں ڈیفنس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا نا, جس کنٹری کے پاس سیکیورٹی اور ڈیفنس ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: پاور ہے اس کے, ڈیفنس ہے, نیوکلیئر ہے اس کے پاس, اور اچھی فوج ہے اور اچھی اوور آل جو ہے نا آپ کے یہاں ڈیفنس ہے,
0: بتاؤں میں تمہیں,
1: تو اس کا ملک, اس کی عزت دنیا میں ہوتی ہے.
0: اتنی اچھی بات آپ نے اس لیے کی ہے کہ میں دیکھ چکا, میں دبئی جاتا میں کہا کیا یار انہوں نے ترقی کر لی ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑا میں متاثر تھا, ابھی بھی ہوں تھوڑا سا, لیکن بات یہ ہے کہ جس ملک کی فوج اسٹرانگ ہو, دفاع مضبوط ہو,
1: جی
0: اصل ملک وہی ہے,
1: پاور.
0: آپ نے شوشہ تو کر لی, سجا تو دی دکان پوری, ملک بھی آپ نے رنگ برنگی بنا دیا, لیکن اب آپ پریشان بیٹھے ہیں.
1: تو آپ دیکھیں وہاں یہ کہوں گا
0: کہ بھی ہو رہے ہیں,
1: ہاں, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان زیادہ اٹریکشن ہو رہا ہے, پاکستان کی فنڈنگ آ رہی ہے, پاکستان کے ڈالرز آ رہے ہیں, پاکستان کے ایکسپرٹس پاکستانی جو ہے پیسہ زیادہ بھیج رہے ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا سلور لائننگ ہمیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے, کسی بھی جنگ میں ہر کسی کا نقصان ہوتا ہے, ہم اتنے ہی یو اے ای کے لیے بھی دعا گو ہیں, کیونکہ پورے جی سی سی کنٹریز کے لیے, سعودی عربیہ ہو, کویت ہو, قطری ہو, سارے ہمارے جو ہے وہ پڑوسی ہیں, سب کے لیے بہتری ہو, ایران کے لیے بھی ہو, اور سب کی اکانومیز دوبارہ بہتر ہوں. چلیں دیکھیں جب اکانومی چلتی ہے, ہمارے بھی ایکسپرٹس پاکستانی بیچارے, ہماری لیبر, ہمارے بھائی بہن وہاں پر ہے, کام کرتے ہیں, ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یہاں پہ, پیسہ واپس بھیجتے ہیں, اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں, ڈالر کی سپورٹ ہوتی ہے.
0: کچھ لوگ نا جب دبئی پہ یہ سب ہوا تو بڑا وہ کریٹیسائز کر رہے تھے, بلکہ خوش بھی کچھ ہو رہے تھے کہ بھائی یہ ہو گیا وہ گیا. میں کہتا ہوں یار دیکھو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں دیکھو ہمارے جتنے پاکستانی بھائی ہیں بہنیں وہ
1: ملین سے پاکستانی رہتے ہیں, ملین سے پاکستانی,
0: اور اس کے علاوہ اور بھی کنٹریز کے لوگ, انسانیت سب سے اہم چیز ہے نا, پاکستان انڈیا تو یہ تو بعد میں بات آئے گی, انسانیت دیکھو کتنے گھرانے بےچارے ایسے ہوں گے, غریب ہوں گے, ان کا
1: نہیں کہنا کہ موقع نہیں ڈھونڈنا چاہیے, موقع نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کسی کے اوپر کوئی نقصان, کسی کے اوپر آفت آئے کچھ ہو, تو اس پہ موقع نہیں ڈھونڈنا چاہیے, بلکہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. پاکستان نے رول پلے کیا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دنیا بھر میں اب میں جاتا ہوں نا, آپ کو میں بتاؤں ایاز بھائی, میرے جو پاسپورٹ کی جو اہمیت ہے نا, آج میں کہیں پہ بورڈنگ پہ اپنا پاسپورٹ رکھتا ہوں نا, اپنا گرین پراؤڈ پاسپورٹ, تو مجھے وہ کہتے ہیں یو دا ون ہو ایکچولی اسٹاپ دس وار, سیریسلی, کہ آپ وہ ہیں پاکستانی جس نے یہ جنگ رکوائی ہے, سب کا فائدہ کیا ہے, کتنی بڑی بات ہے, مطلب میرا سینہ چوڑا ہوتا ہے, اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں,
0: ویسے ہی آپ کا چوڑا ہے
1: ماشاءاللہ اللہ. تو اس لیے ہمیں اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے.
0: سنجیدہ نے بات اچھی کی کہہ رہی ہے, سوال پورا نہیں سنا, یہ بچپن سے ہی ایسے ہیں, یہ انہوں نے سب کسی کی نہیں سننی, سب
1: میری عادت ہو گئی پچھلے گھنٹے میں, کیونکہ آپ میری بات نہیں سن رہے, تو مجھے وہ اپنی اسٹڈی چینج کرنا پڑ رہی ہے کہ ایاز بھائی کے جو ہے نا وہ ٹریک پہ چلیں, تو
0: نہیں نہیں میرے ٹریک پہ بالکل نہ چلیں جناب,
1: چلیں
0: میں ٹریک نہیں چلا رہا, ایک بریک اور بریک سے پھر واپس آتے ہیں. خرم بھائی آج آئے ہیں تو ذرا ٹریک کم پلے کر رہا ہوں, باتیں زیادہ کر رہے ہیں, گانے تو ویسے بھی سنتے رہتے ہیں ہم. دوستوں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
2: اس ملک کی پاسبانی, نگرانی اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اور آزادی کی خوشیاں منانے کا دن, آزادی کی خوشیاں منانے کا دن, کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان, یوم آزادی.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: 100 FM
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: 100 FM
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: 100 FM
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: प्याज तो सुनो यार।
5: Alright, जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। अयाज अहमद के साथ और मेरे साथ खुरम शहजाद मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा खुरम भाई, जरा वैसे हम जनरल बात कर रहे हैं कि इतनी गहमा गहमी इस दफा नजर नहीं आ रही, क्या चक्कर है?
6: नहीं, गहमा गहमी तो बहुत है।
5: आज तो शुक्र है, आज से नजर आ रहा
6: है। से होके आया हूँ, इस्लामाबाद से कराची जब आ रहा था, ठीक है, तो इस्लामाबाद भी इस मरतबा बहुत ज्यादा सजाया गया है। एक्चुअली वहां मार्का हक आपको याद होगा,
5: बिल्कुल,
6: जो इंडिया के साथ हमने किया, उसके बाद वहां पे एक छोटा सा एरिया जो है बनाया गया, एक मॉन्यूमेंट टाइप का, तो वहां पे स्पेशल सर आज जो है एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट, आई थिंक वो लाइव भी चल रहा होगा
5: सिटी,
6: और उसके बाद फिर कल भी इवेंट है वहां, और इस्लामाबाद अक्रॉस द सिटी आपको सिर्फ एक कलर नजर आएगा, वो है हरा, ठीक है, और वाइट भी साथ है हमारे, क्योंकि ये दोनों हम मिलके इस मुल्क को हमने जो है वो आगे लेकर आए हैं।
5: माशाल्लाह,
6: हमारी अकलियतें, हमारी मेजोरिटी, ये सब हम एक हैं। मतलब इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो ये वर्ड भी यूज बहुत कम करता हूँ कि कोई माइनॉरिटी है या कोई मेजोरिटी है, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सबका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वेट डिफाइन करता है, ज्यादा दिन ये कि हम ये कहते रहे कि जी आप कम हैं, आप ज्यादा हैं, हम सब सेम हैं। इस मुल्क को सबने जो है अपना खून पसीना दिया है, यहां तक पहुंचाया और आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह बेहतरी के लिए। ये है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस्लामाबाद में अच्छा खासा जो है वो
5: अच्छा,
6: और आपको पता है मनचले नौजवान और हमारे
5: वो तो होंगे, अभी जैसे सीवीयू पे शुरू हो जाते हैं लोग जाना, और आज तो भाई बैरिया टाउन में बड़ा जबरदस्त कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा है, इसके अलावा बहुत सी जगह आर्ट्स काउंसिल में जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वहां पर भी।
6: लेकिन आपको पता है, मैं अभी आप स्टूडियो जब आ रहा था तो मैंने देखा शारा फैसल पे, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल अक्रॉस यू नो बोथ साइड्स ऑफ द आइल, ये जो कलर्स हैं और जिस तरह से सजाया जाता है, ये जो जील है, ये जो रिगर है, और ये जो हमारी वो है, एक हमारा अंदर एक पैशन होता है ना उस वक्त जब 14-13 अगस्त होती है, उसके बाद फिर अगला दिन आता है, ये जो ओवरनाइट है ना चीज,
5: चांद रात जैसा
6: यार, सीरियसली
5: चांद रात वाला माहौल,
6: इसमें तो बस जो हमारा खून जोश मारता है सीरियसली। आपके तो इस एज में बहुत मुश्किल होगा यार भाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि बहुत,
5: मैं आपको अभी एक ऐसा ट्रैक सुनाने वाला हूँ कि आपका जोश जो है ना, बस
6: जी करें
5: स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, आप चेक करें, आप ये देखें

0: क्या कहने। अच्छा ये जो तराना लग जाता है ना, इससे लगता है कि भाई आजादी जो है ना, जश्न आजादी शुरू हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: तेरा पाकिस्तान है।
1: देखिए मेरा पाकिस्तान तो है। मैं तो इस वक्त जो है ना उस मेरा एक स्टेट आता है इसमें।
0: अच्छा।
1: स्टेट से मुरादी मेरी एक सिचुएशन बनती है।
0: आपका स्टेट भी बन जाएगा
1: इंशाल्लाह। मैं ये सोच रहा हूँ
0: जिस स्टेट पे हैं,
1: स्टेट ऑफ माइंड की बात।
0: अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड।
1: मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन, अब ये बचपन से है, जब ये 13 अगस्त और 14 अगस्त ये जब होता है ना, तो इसमें ऑब्वियसली सब हम जो पाकिस्तानीज हैं, जहां भी हैं, पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, पूरी दुनिया में हैं, हम सब एक सोचते हैं सिर्फ, वो ये इस मुल्क के लिए हमने बेहतर कैसे करना है।
0: माशाल्लाह क्या बात है।
1: इस मुल्क में कंट्रीब्यूट क्या करना है। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हम एक कमिटमेंट जरूर देंगे आज। आपने आज भी सबसे पूछना है कि हर कोई अगर एक कमिटमेंट करे आज कि मैंने अगले एक साल में ये काम करना है अपने लिए और जिससे सबको फायदा होगा।
0: मैसेज करें भाई, ये सब ये मैसेज करके बताएं
1: लाइन में ना, एक लाइन में कि मैं आज ये काम करूंगी या तैयार करती हूं या करता हूं कि मैं अगले एक साल में एटलीस्ट ये काम करूंगा। आपको मैंने बताया था 20 करोड़ हमारे पास लोग वो हैं, वैसे तो 25 करोड़ है माशाल्लाह से, लेकिन मैं बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों को हटा रहा हूं इस वक्त, क्योंकि वो बड़े होंगे तो सोचेंगे।
0: नहीं, नहीं,
1: तो 20 करोड़ लोग हैं जिसमें नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मिडिल एज हैं, ये सारे एक आज कमिट ये करें कि मैं अगले एक साल में एक ऐसा अच्छा काम करूंगा। तो आप यकीन करें 20 करोड़ अच्छे काम होंगे और उसका जब कनेक्टेड एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट होगा वो तो अरबों में जा सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है,
0: अरबों से
1: कितना इम्पोर्टेंट है,
0: अरबों से कुछ नहीं होने
1: वाला। एक कमिट करें और आज एक काम करें।
0: चले भाई, ये आप लोग जरा मैसेज
1: करें, मुझे बताएं। मैं अपनी कमिटमेंट की बात करूं, सर मैं आपको बताता हूं पहले। आप सबसे मैं ये कहता हूं कि मैं किसी एक की लाइफ में चेंज लाऊंगा बेहतर।
0: मेरे से आगाज करें आप,
1: ये मैं कमिट करता हूं।
0: अच्छी बात है। अच्छा जनाब रानी जी, बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। रानी जी ने कुछ पूछा था आपसे, वैसे आपको मैंने मैसेज
1: जी रानी हुसैन ने बड़ा जबरदस्त मैसेज किया। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मैसेज रानी। आपने मुझे कहा, आपने मुझे दुआएं दी, आपने मुझे अच्छा कहा और थैंक यू, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे।
0: आमीन।
1: और आपने ये भी कहा कि हमें ख्वाब देखना चाहिए आज। मैं तो ये कहता हूँ ख्वाब ऑलरेडी हमारे फोर फादर्स ने देखा है,
0: बिल्कुल
1: उसे पूरा करना है। बस पूरा हम नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन हमने करना
0: लेकिन
1: है।
0: लेकिन अभी तक जितने 3-4 साल गुजरे हैं, ये जरा सा डरावना ख्वाब गुजरा है। आगे उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ख्वाब जो है वो बन जाए। पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, अच्छी बात फैलानी चाहिए और मैं लगा हूँ उस काम में, हिम्मत कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छा
0: मैं ना रानी तो छा गई है। अच्छा जनाब,
1: उनका नाम सेज डॉल।
0: हाँ ना, रानी नाम है जिसका, रानी हो तो क्या कहने। अच्छा जनाब, तो क्योंकि बस थोड़ी देर बाद 14 अगस्त की जो है ना आगाज होने वाला है, तो अब जरा नेशनल गानों के ऊपर जरा मैंने फोकस रखा हुआ है। और एक नेशनल गाना जो कि मेरा बड़ा फेवरेट, पुरम भाई आपका भी यकीनन फेवरेट होगा, आवाज बैंड और इनका ये खूबसूरत ट्रैक, इंजॉय करें। और मैसेजेस
1: मेरे बचपन का है, आपका तो वो पहले वाला था,
0: मेरे तो सारे
1: मेरे बचपन का।
0: इंजॉय करें, मैसेजेस करें 360।

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
3: FM 247365।
4: यमी जबरदस्त।

0: राइट जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ कॉल्स का सिलसिला भी काश मैं कहता कि जारी है, लेकिन यार मैं कॉलर को बहुत मिस करता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि 14 अगस्त की खुशखबरी में यानी खुशी में ये कॉल्स का सिलसिला भी जरा शुरू हो जाएगा। कॉल्स हमारी जरा आजकल ऑफ हुई है तो इंशाल्लाह ये भी जल्द सिलसिला खुलने वाला है, तो मुबारक हो। और इसके अलावा आप मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या अच्छे काम का आपने सोचा है। अब्दुल वाजिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम अब्दुल वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद मौजूद है हमारे साथ और खुर्रम भाई से हम जनाब काफी मैंने जरा अजीब से सवाल कर लिए हैं तो उसके बावजूद, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी आपने, आपने किसी बात को माइंड नहीं किया, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: मैं माइंड क्यों करूंगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ।
0: वाह वाह,
1: मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत।
0: सर आप करें, सर आपका शो है।
1: मैं ही पूछना चाहता हूँ अपने सामाइन से, देखते हैं वो किस तरह वो कैलकुलेट करते हैं।
0: जी जी,
1: हमारी ये जो जश्न आजादी का दिन है जो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, ये कौन सा साल है, 79th है या 80th है, 79वां है या 80वां है, ये मेरा सवाल है सामाइन से, देखते हैं उनके।
0: अभी हालांकि आपने जवाब दिया हुआ शुरू में।
1: जी जी, तो मैंने जिसने सुना होगा वो
0: हाँ ये क्या फोकस होगा यार, तुम्हारे अंदर एक पूरी वो एक एंकर छुपा हुआ है, ये आपको बता दूं मैं।
1: ये तो मैंने एक बड़ी स्टैंडर्ड एक सवाल पूछा है।
0: नहीं नहीं, ये
1: देखते हैं,
0: ये देखो मैं अब देखो तारीफ कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में किया था,
1: और भी करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जवाब क्या आता है।
0: जवाब कुछ भी नहीं आना,
1: आप बताइए कौन सा है, पहले तो आप बताएं।
0: मैं बता दूं,
1: 79th और
0: 79th, आपने जिस तरह बताया बिल्कुल सही बताया,
1: 79th है
0: आपका बिल्कुल।
1: नहीं तो कैसे 79th है,
0: करो हिसाब किताब करो।
1: 47 से 2026
0: तक, 2026
1: तक कितने साल बनते हैं
0: बताओ, हिसाब करो खुद ही।
1: अच्छा बताएं, इंडिपेंडेंस डे और एनिवर्सरी में क्या फर्क होता है।
0: यार ये सवाल किया आपने वाकई में, ये किया आपने।
1: हाँ तो
0: हमेशा की तरह मैं इस दफा भी फेल ही हूँगा, क्योंकि पहले भी मैं स्कूलों में भी फेल हूँ और यहाँ भी उम्मीद करता हूँ पूरे तरीके से फेल। आप बताइए क्या है।
1: नहीं ये तो मैंने सवाल किया ना,
0: नहीं तो बता दो हमारे अपने माशाल्लाह अपने
1: हमारे पूरा यकीन सामाइन से नहीं बताना, हमारे जो लिसनर्स हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, हमारे वाले सिर्फ गाने सुनते क्रिटिसाइज करते
1: हैं। अंडर सिमेट क्यों कर रहे हैं अपने लिसनर्स को,
0: मैं
1: इतना छोटा क्यों,
0: करोड़ों साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है ना, मैं बता
1: आप सामाइन को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए अभी सही सवाल आएंगे और मेजोरिटी मेरे ख्याल में मुझे लगता है हमारी जो लेडीज हैं, हमारी जो लेडीज हैं फीमेल्स हैं वो ज्यादा बेहतर, मुझे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
0: यासुद्दीन बलबन कह रहे हैं 79, इसका मतलब मैंने सही जवाब दिया।
1: नहीं वो आपने कहा ना, एक्चुअल क्या है,
0: अबे एक्चुअल यही है और क्या।
1: मैं फिर आपको मौका देता हूँ, आप कैलकुलेट करें
0: चार मिनट,
1: ठीक है। मैंने कहा एनिवर्सरी एंड इंडिपेंडेंस डे दोनों में फर्क है।
0: अच्छा बता दो फर्क, बता दो टाइम जाए की बगैर।
1: नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, जवाब तो आने दें।
0: ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, अब जनाब टाइम भी थोड़ा स्पीड से, जैसे यार एक घंटे का मैंने सोचा था बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
1: जो शुरुआत की
0: सरकार टाइम अपना एंड की तरफ जा रहा है और गाने बहुत सारे मैंने रखे। तेरा पाकिस्तान है,
2: तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान।
0: यार एक ट्रैक मुझे नुसरत फतेह अली साहब का।
1: अच्छा
0: हमारे एक दोस्त हैं इस वक्त सीबीयू पर मौजूद हैं और उनका नाम है आसिफ भाई द ग्रेट। आसिफ भाई कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों का रश जो है वो सीबीयू पर मौजूद है और सलवार कमीजें लोगों ने पहनी हुई है और अब हाँ व्हाइट कलर की सलवार कमीज, हरे रंग का पटका,
1: क्या बात,
0: फुल माहौल हुआ हुआ है।
1: ये वैसे मैं बताऊं,
0: और बाजे जो है बाजे वो फुल टाइम बज रहे हैं।
1: अयाज भाई
0: वैसे तो कौम के भी बाजे बज गए हैं महंगाई की वजह से,
1: ईद की तरह जो मैं देखता हूं ना वो इम्पोर्टेंट ये कि बच्चे और हमारी लेडीज,
0: ठीक है,
1: ये जिस तरह से 14 अगस्त पे भी तैयार होती हैं वो उनका कोई सानी नहीं।
0: क्या कहने क्या कहने। अच्छा जी मिसेस फारूक वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप भाई आज, क्योंकि जरा चांद रात वाला माहौल है और 13 अगस्त, मैंने कहा 14 अगस्त करवा के ही मैं स्टूडियो से निकलूंगा।
1: मुझे चांद नजर भी आ रहा है वैसे।
0: चांद तो खैर आप खुद हैं माशाल्लाह, मुझे तो कंप्लीट नजर आया, ये तो पहली का मुझे देख रहे हैं आप, मैं तो काफी कमजोर हूँ माशाल्लाह, आप पूरे चांद हैं, 14वीं का चांद।
1: थैंक यू,
0: गाना याद आ गया, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तुम आफ्ताब लग रहे हो वैसे, डॉक्टर आफ्ताब, राइट जनाब, ऑल टाइम फेवरेट सर, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ ये।

0: Yummy.
1: Che piasto sono io. Che piasto sono

0: Alright, Janab, welcome back. Sun rahe FM 100 aur time, Janab, is speed se guzarta chala ja raha hai. Abdul Wajid kehne 79 years. Acha, Janab, 79 year ho gaye hain inke hisab se. Lekin jo Mrs. Farooq batani hai, wo zara kuch change batani hai. Khuram sahab, aapne gaur se sunna hai.
1: Ji.
0: Wo keh rahe hain bhai ke, ek minute zara main awaaz set kar lu. Ke 80 saal, 80 years honge, ye kaise ho sakta hai? Is pe aap zara roshni daliye, Khuram bhai.
1: Dekhen, मैं जवाब दे दूं फिर?
0: आप तो जवाब देने के लिए बैठे सर.
1: लेकिन मेरे ख्याल में हम बाकी लिसनर्स का भी सुन लेते हैं जवाब क्या है.
0: मेजोरिटी जो है ना 79 कह रही है, तो बस
1: 79 क्या
0: 79 हो गए पाकिस्तान को बने हुए. आप हिसाब किताब लगाए
1: नहीं. अब मैंने दो चीजें कही, इंडिपेंडेंस डे कौन सा है.
0: अच्छा
1: ठीक है, 79th है या 80th है. ठीक है, 79वां है या 80वां है. मैं ये कह रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे कौन सा है.
0: मैं तो बेहोश रहूंगा, छोड़ दें आप, छोड़ दें.
1: आपने कहा 79th है.
0: 79th मैं तो ये कहता हूँ.
1: ठीक है
0: 79 ईयर.
1: अब दोबारा सोच लें.
0: छोड़ो यार, जो होगा बजट आप भाई अपना हिसाब से आप मुझे बताइए क्या सही है. अच्छा जनाब, हाय हाय,
1: ये 80वां
0: जो है,
1: ये 80वां
0: मनाएंगे.
1: नहीं, 80 जी, 80वां हमारा.
0: अच्छा
1: जो है वो इंडिपेंडेंस डे है.
0: चलो जनाब,
1: जो एनिवर्सरीज हैं वो 79th एनिवर्सरी है.
0: ठीक हो गया जनाब,
1: इंडिपेंडेंस डे जो है वो 80वां है.
0: जनाब कुरम भाई ने हमें पूरी डिटेल से बता दिया, और संजीदा जी इतने अच्छे अच्छे खानों के नाम आप लिख रही हैं, भूख भी लग रही है वाकई में. तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान है. और देखते ही देखते टाइम भी जो है वो गुजरता चला जा रहा है. आप सब लोगों को एक दफा फिर जश्न आजादी बहुत मुबारक हो, जोश तरीके से मनाए. मुल्क से बहरहाल हमें बहुत प्यार है. अगर लोग थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं या कुछ कहते हैं, क्योंकि मुल्क से प्यार है तो इसीलिए कहते हैं.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: और लोग अगर किसी को भी बुरा भला कह रहे हैं सिर्फ इस मुल्क से प्यार की वजह से, कि मुल्क जो है वो तरक्की कर जाए.
1: लेकिन मैं कहता हूँ कि हम शिकायतें करें, अपनी जगह है शिकायत करना, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना रोल भी प्ले करें. हम अपने आप पे जो है वो काम करें, और अपना कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे ख्याल में हमें बड़ा सोचना चाहिए.
0: भाईजान कहाँ रोल
1: के हम देखें, आप यहाँ बैठ के एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इस तरह से बात करते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का बायस बनते हैं, उनके लिए कुछ नई चीज लेकर आते हैं, कुछ नया पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, कोई नई सोच लेकर आते हैं. रोज आप कोई ना कोई कोई नया उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, वो रिलेट करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपकी बात सुनते हैं. आप रिस्पांसिबिलिटी के साथ कोई बात करते हैं वो सुन के उसे अमल भी करते हैं. टाइम्स आपके साथ, आप देखें कितने अच्छे लिसनर्स हैं आपके, आपके साथ कितने कनेक्टेड हैं. ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज है, हर किसी को लोग फॉलो नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है. तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं. इनफैक्ट
0: ये बात मैं उनका और वो मेरी,
1: एब्सोल्युटली. तो देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट. आप बिल्कुल सवाल करें, क्रिटिसाइज करें, अपना हक मांगें बिल्कुल, और जिससे मांगना चाहिए उसे मांगें. आप कहें कि जी हमारा यह हक है, हम यहाँ टैक्स देते हैं, हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना रोल भी प्ले करें कि अगर कहीं पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप अपना वहां पे कंट्रीब्यूशन करें, ताकि आप जो है वहां पे यानी कि फिल इन कर सकें वो चीज. तो मेरे ख्याल में अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी अपनी बेहतरी के लिए काम करें, जो कि ऑटोमेटिकली जो आपके साथ लोग होते हैं उनको भी फायदा होगा.
0: इसी बात
1: हमेशा ये सोचेंगे कि बगैर किसी इंटरेस्ट के मेरे साथी, किसी का भी दोस्त यार जो भी हमारे सर्कल में है, कोलीग्स हैं, सबका फायदा हो. और हम ये सोचते हैं कि जी हम दे रहे हैं फायदा ये, लेकिन शायद हमें कुछ ना मिले. आप यकीन करें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, कि आप सिर्फ ये सोचेंगे ना कि मेरे साथ जितने लोग हैं सबका कहीं ना कहीं फायदा होता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं सेल्फलेस होके जो है वो सपोर्ट करता रहूं, कहीं ना कहीं कुछ करता रहूं अपनी कैपेसिटी में. आप यकीन करें आपको ये मुड़ के चीज आएगी आपके फ्यूचर में, और आपको कहीं ना कहीं वो फायदा मिलेगा.
0: इसी बात पे
1: जी, इसी बात पे
0: इसी बात
1: मैं कहूंगा जी, तराना सुनाए.

0: वाह वाह क्या बात है, इस परचम के साए तले हम एक हैं और काश हम ऐसे ही एक रहें। अच्छा जनाब खुर्रम भाई, टाइम अब कह रहा है टाटा बाय बाय करने का। जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस, कोई अच्छी बात हमारे एफएम 100 के लिसनर्स को? खुर्रम शहजाद भाई हाजिर।
1: मैं कहूंगा कि ऐसा दरख्त बने, देखें ये बड़ी ख्वाबी और ख्याली और किताबी बातें लगती हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा ऐसा दरख्त बने और ऐसा शजर बने जो फल दे और सबका इससे फायदा हो, नंबर वन। सेकेंडली, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम आज एक रिजॉल्व करें, एक कमिटमेंट कर लें सिर्फ कि मैं आज ये कहूं कि जी मैं आज ऐसा कुछ काम करूंगा, वो अपनी कैपेसिटी में कुछ भी हो सकता है, वो छोटा बड़ा काम नहीं होता। काम आप सोचें कि आपने क्या ये ऐसा करना है जिससे आपको, आपके इर्द गिर्द लोगों को, आपके सर्कल को, चाहे दोस्तों का हो, फैमिली का हो, अपने कोलीग्स का हो, जैसा जहां आप काम करते हैं जिनके साथ, इन सबको किसी एक को फायदा पहुंचाने का एटलीस्ट सोचें आप कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिससे ना सिर्फ मुझे फायदा होगा बल्कि मेरे साथ में दूसरों का भी फायदा होगा। अब यकीन करें, मैंने कहा ना, हमारी कॉम अगर ये सारा रिजॉल्व करे, एक कमिटमेंट कर ले आज, मैं नहीं कह रहा 10-50 हजार चीजें आप करें, प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट ना कर सकें, मैं कह रहा हूं एक कमिटमेंट करें और पूरे साल में अगले 14 अगस्त को उसको फिर कहते हैं ना आप, उसे पूरा पीछे की तरफ देखें कि इस साल में वो क्या अच्छा काम किया आपने। ये सब लोग अगर सोचें तो 20 करोड़ लोग हैं जो कि बच्चों को हटा के, छोटे बच्चों को हटा के 20 करोड़ लोग ऐसे हैं अयाज भाई, जो ऐसा सोचें और एक साल में वो एक काम कर लें सिर्फ, तो आप सोच सकते हैं कि एक काम जो है वो कितना एक्सपोनेंशियली जो है फैल सकता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने लिसनर्स से, एक काम ऐसा करें जो कि आपने पूरा करना हो और बेहतर काम करना हो, अपने ऊपर करें, अपने अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए करें, नंबर वन। सेकेंडली, मैं एक किताब रिकमेंड करूंगा दोबारा से, ठीक है, वो मैंने लास्ट टाइम भी की थी,
0: दोबारा कर दे,
1: ठीक है, कर दूं मैं,
0: कर दे कर दे, पढ़नी तो अभी भी नहीं पहले नहीं पढ़ी, कौन सा पढ़ लेंगे।
1: हाँ, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स है,
0: चले जाना,
1: एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, आप यकीन करें किताब पढ़ें, बहुत इंस्पिरेशनल है, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं उस पर अमल करके। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आपको 80वां इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो और 79th एनिवर्सरी पाकिस्तान की मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क को कलेक्टिवली साथ लेके जाएंगे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और खुर्रम भाई, इस प्रॉमिस के साथ दोबारा भी आपने आना है, और इसी तरह जब भी आप जब इस्लामाबाद से कराची आए थे,
1: बिल्कुल
0: मेरे शो में आपने लाजमी आना,
1: इंशाल्लाह। थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स हु बीन सो नाइस, सो लविंग,
0: असगर साहब का भी,
1: एवरीवन,
0: चले जनाब, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और दोस्तों, जश्न आजादी जो कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है उसका आगाज होने वाले हैं,
1: हमने एडवांस में कह दिया,
0: हम एडवांस में कह रहे हैं, जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, अपने होस्ट अपने प्रेजेंटर अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामा।

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार।
1: FM 100 टाइम चेक। It's 12 midnight.

वेलकम बैक कहेंगे जनाब आप सबको और कौमी एंथम से हमने अपने शो का आगाज किया है। पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो सिर्फ पटाखे फोड़ने से, बाजे बजाने से और आतिशबाजी करने से, हवाई फायरिंग करने से नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार इस मुल्क को संवार कर करें। हैं जी, ते हैं जी, कितना संवार रहे हैं ये अभी हम आज बात करेंगे। तो सुने हो, आज शो का आगाज जो है वो एग्जैक्टली फौरन से पेशतर जो है आपके मैसेजेस की जानिब से करेंगे और देखेंगे कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किस तरह करते हैं। पाकिस्तान से आज का सवाल भी यही है कि कितनी मोहब्बत है आपको अपने इस मुल्क से और उसका इजहार आप किस तरह करते हैं, ये आपने मुझे बताना है। अमीन चांदी सबसे पहले आगे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आपको एफएम 100 की पूरी टीम को, स्वीट सी फैमिली को सलाम और तमाम अहले वतन को जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। और अमीन चार्ली की बर्थडे नाइट है, हैप्पी खुशियां मुझे और यूसुफ भाई को और जिन जिन की बर्थडे है उन सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। भाई हैप्पी बर्थडे आपको भी अमीन भाई और हमारे प्यारे प्यारे यूसुफ भाई को भी। लेकिन उसके साथ साथ एक और हमारी मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर भी है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है जो कि दुबई में होती है, जिनका नाम है फरहीन। फरहीन की भी आज बर्थडे है, तो फरहीन

तो जनाब बर्थडे विश भी हुई है और मैसेजेस आपके हैं। अजीज खान कह रहे हैं सलाम टू ऑल, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, फ्रॉम माय सन मोहम्मद मोहम्मद। अच्छा, इनके सन का नाम सिर्फ मोहम्मद है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फरीन का मैसेज आ गया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सब एफएम 100 की फैमिली को मेरी तरफ से सलाम और जश्न आजादी मुबारक हो। भाई हमने तो आपको भी मुबारकबाद दी है आपकी बर्थडे पे, हैं जी ते हैं जी। अब दुबई में हो तो क्या केक शेक मंगवाए। और संजू भी आ गई है, क्या बात है, क्या बात है संजू की। कहती है मैसेज आ रहे भाई, कहाँ गया मैसेज, ये रहा। कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नदीम सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहे। माहे आजादी की खिलती महकती महसूर कुन फिजाओं में दिल की मधुर धड़कनों की मध्यम मध्यम सी मीठी धक धक से खुश आमदीद। कहती हैं जिसकी खनक इन आजाद माहौल में शुक्राने की जल तरंग बज रहे हैं, पेशानी रब ताला के आगे झुकी नफल अदा कर रही है हूं। और रूहन नाप का जोश अंदाजे बयां, वतन की मोहब्बत में सरशारी के लिए झूम रहा है, दिल से इस लम्हे को अमर होने की दुआ दे रहा है, रब ता कयामत आबाद रखे। मैं अपने ख्वाब से कट के जीऊं तो मेरा खुदा उजाड़ दे मेरी मिट्टी को दर बदर, उजाड़ दे मेरी मिट्टी को दर बदर कर दे मेरी जमीन, मेरा आखिरी हवाला है सो मैं रहूं ना रहूं इसको बारवर कर दे। इलाही आमीन, इंशाल्लाह इख्तिताम तक सात सांसों ने वफा की तो उम्मीद है। रुहमन आप जैसे काबिले मुहिब वतन मेजबान नदीम अख्तर की पाकिस्तान को हमेशा जरूरत है, हर खास मौके पर आपने एफएम 100 की पहचान कराई है, काबिले फख्र काबिले मान है, सलामत रहें आप की रुहमन। और बहुत ही खूबसूरत प्यारे लफ्जों का चुनाव हमारे वतन के लिए, मेरे लिए, एफएम 100 के लिए, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया संजू आपका। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, शाद रहें, आबाद रहें ता कयामत। हैं जी ते हैं जी। जबरान यूसुफ जई साहब कह रहे हैं जश्न आजादी मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हैं जी ते हैं जी। मिर्जा साहब आगे ने गुज्जर खान तो और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक, जबर बहुत खूब जबरदस्त आपने शो का आगाज, क्या कहने हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और हमारा मुल्क खूब तरक्की करे, आमीन। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक नेक और ईमानदार लीडर अता फरमाए। इस हवाले से भी बहुत सारी बातें करूंगा, आज जश्न आजादी है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार मैं करूंगा और मोहब्बत का इजहार में बहुत सारी मैं आप लोगों से कड़वी बातें करूंगा, जिसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाह रहा हूं, बात सच्ची है मगर कड़वी है। हैं जी, अपने मुल्क को संवारने में और अपने मुल्क को बिगाड़ने में उस मुल्क की आवाम का बहुत हाथ होता है, तो बस ये जहन में रखिएगा कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने जो सवाल किया है उस सवाल पर भी गौर कीजिएगा, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार आप किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं। खूबसूरत सा कौमी नगमा, जिंदाबाद।

वेलकम बैक आएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैसेजेस आप क्या रहे 3636 बार, और हमारी प्यारी सी मुश्क भी आ गई हैं। क्या कह रही हैं मुश्क? कह रही है अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है? जश्न आजादी मुबारक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कल का शो भी इन्फॉर्मेशन के लिए था। और हैंडसम आप क्या हर दिन की रिसर्च करते हैं माशाल्लाह से? नहीं, इत्तफाक ऐसा है, आप यकीन मानिए कि जब मैं शो के लिए आता हूं तो उस वक्त पता नहीं होता कि मुझे ज़हन में नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, बट ये है कि बस आकर अल्लाह ताला इज्जतें रख लेता है। हैंडसम, इस वक्त आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा है, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वतन का प्यारा परचम खूबसूरत भी, दिल नशी भी, मेरे वतन की हर वादी पुरसकून भी, हसीन भी, खुदा करे ये रहे कायम सुबह कयामत तक, शाद आबाद रहे इसका हर मकी भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। भाई वाह, भाई वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे मैसेजेस। पाकिस्तान के 79 साल सफर से एटमी ताकत तक, बहरान जंगे कुर्बानियां और बेशुमार कामयाबियां, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और वाओ हैंडसम एनर्जेटिक, एक बार फिर वेलकम, योम आजादी ईद मुबारक, पाक सरजमीन शाद बाद, आपकी दोस्त को हैप्पी बर्थडे, और जनाब अमीन भाई और दूसरे भाई को भी हैप्पी बर्थडे। हमारे दूसरे भाई हैं यूसुफ भाई, पापोश वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन, हर दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुश्क सो स्वीट मैसेज, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जनाब सुभान अल्लाह, शुरुआत ने दिल खुश कर दिया नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया संजू। और यूं दी हमें आजादी की दुनिया, हुई है हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान, जश्न आजादी मुबारक हो। अरे क्या प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन माने। हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं, वो आज क्या कहते हैं जरा देखते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं भाई वो, फिलहाल एम ही मैसेज आया उनका। अदीला मेरी प्यारी सी बहन आ गई है और कहती है सलाम भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर डे, आज के दिन के हवाले से मेरी प्यारी सी बहन बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, साहबजादा कह रहे हैं। जमीला कह रही हैं, जमीला अजीज खान कह रही हैं सलाम टू ऑल, जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना। और नदीम भाई ये वाला कौमी तराना भी चला दें, सबा गुल कह रही है, सबा गुल कहाँ गायब हो तुम, और लाला लाला कल एब्सेंट थे आप, ये गैर हाजिरी के जो है ना सजा मिलेगी। और लाला भी आ गए हैं, लाला के मैसेज से पहले मैं देखूं कौन कौन से मैसेज रह गए हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाला को, संजीदा आपी को, मुश को, आनूर को और सब सुनने वालों को सवा गुल का प्यार भरा सलाम, और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। अमीन कहते हैं संजीदा बहन और पगली बहना, मुश्क बहना, नौरीन बहना और अयूब लाला, एने लाला, उम्मे रुबाब, सबा गुल, समरीन बलोच, राबिया, समी, हलीमा पठान, अबे सबके ही नाम लिख दिए भाई, सबको ही जश्न आजादी मुबारक लिख दें, सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो, जिनके नाम नहीं ले रहे उनको नहीं मुबारक हो, हैं जी जी हैं जी। अच्छा जी, जबरान यूसुफ जई साहब ने भी जश्न आजादी मुबारकबाद दिए, और लाला आ गए हैं कह रहे हैं जाने जिगर या हबीबी, आपको सबा गुल को, मश को, मानूर को, हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। और कहते हैं कि सलीम भाई जश्न आजादी मुबारक, सलीम भाई बाजा बजाने से परहेज लाजमी कीजिएगा भाई, अब ये सलीम मेहमान आएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या बजाया। और सलाम कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू और सबको सलाम कहा है, जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक कहा है मेरी प्यारी शहजादी बहना जरीन नूर। और जनाब ये काफी तवील मैसेज है, हमारे प्यारे से यूसुफ भाई का पापोश से मैसेज आ गया और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने विश किया हम तीनों को, बहुत अच्छा लगा और मैं ड्यूटी पर हूँ, कल इंशाल्लाह हमारी छुट्टी होगी, बाकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगा, कौमी तराने में भी खड़े होकर इस तराने में शामिल रहा माशाल्लाह।
और हारिस भी शामिल रहा, उसने भी बर्थडे पर 18 अगस्त को, तो आप हारिस को भी विश कीजिएगा, 18 अगस्त को जरूर करेंगे विश भाई हम अपने प्यारे से हारिस भाई को, उनको कह दीजिएगा। और चलो अब आप सब बर्थडे बॉय अमीन चार्ली को गिफ्ट्स केक बेस्ट विशेस दें, एंड एने भाई मेरी जानिब से ऑल पाकिस्तान को डेडिकेट कर दें। बिल्कुल करेंगे जनाब, आप कौमी नगमे ही चल रहे हैं तो स्पेसिफिक कोई नगमा आप बताएंगे। वैसे जितने भी अभी तक नगमों की फरमाइश आई है वो तमाम के तमाम मेरे क्यू शीट में शामिल है, इत्तफाक ऐसा है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। मुश्क, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर विश, सदा सलामत रहे। फरहीन कह रही है दुबई से, मुश्क का आएगा मैसेज। और शुक्र नदीम, अल्लाह पाक की रौनकें कायम रखे, आपकी आमद ने 14 अगस्त की खुशियां बढ़ा दी हैं। हाय अल्लाह जी। अमीन भैया बर्थडे बॉय साल की गिराहें मुबारक हों। क्या लिखा हुआ है? गिराहें ही लिखा है। अच्छे से यूसुफ भैया को भी सलामत रहें और सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आए हाय। और इनका एक बड़ा जबरदस्त सा मैसेज है, मिला नहीं वतन पाक को तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। मोहसिन भोपाली का ये इंतखाब है। अच्छा, आज के शो में अगर आप अपने वतन को ट्रिब्यूट पेश करते हुए कुछ अशार अपने वतन के नाम करना चाहें तो जरूर आप भेज सकते हैं। थैंक यू संजू। बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। वाह वाह वाह वाह परवीन जागर। और ए खाक वतन, तुझसे मैं शर्मिंदा बहुत हूं, महंगाई के मौसम में ये त्यौहार पड़ा है। हाय मुनव्वर राणा साहब, फी जमाना के हिसाब से बड़ा जबरदस्त शेर है, क्योंकि झंडियों और झंडों की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं उसके हवाले से बहुत से हमारे गरीब व गुरबा ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि झंडा खरीदने की सकत नहीं रखते। तो ये मुनव्वर राणा साहब ने, क्या बात है संजू। ओके ठीक यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? लाला को मुश्को सबको सलाम कहा है और जश्न आजादी मुबारक कहा है। हिना गुल, तुम लोग कहाँ गायब हो? सबा तुम भी बताओ। अयूब लाला को तो जो है पनिशमेंट मिलेगी और तुमको, तुम दोनों को भी मिलेगी। कहाँ गायब थे जरा मुझे बता, एक साथ कैसे गायब हो गए? मजाक कर रहा हूँ। चले जी, इसी बात पर आपको हम अपने वतन की कहानी सुनाते हैं और ये कहानी सुना रहे हैं आवाज बैंड। कैसे सुना रहे हैं जरा सुनिएगा।

0: वेलकम बैक कहेंगे वतन कहानी। और उम्मीद करता हूं कि तमाम कौमी नगमे आपको सारे अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों से बातें भी करता रहता हूं और जरा देखता हूं कि आवाज बेहतर कैसे होती है,
1: कैसे होती है।
0: अब देखते हैं, अब देखते हैं।
2: हेलो, असल में मैं चाह रहा हूं कि आवाज कुछ ऐसी हो जाए कि आप लोगों को
0: मैं आशार पढ़ूं तो वो अच्छे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे।
2: गुफरान भाई आए नहीं? ओए होए, कैसी आवाज आ गई।
0: तो गुफरान भाई आए नहीं तो वरना वो सेटिंग ऐसी जबरदस्त करते हैं कि कमाल हो जाता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। हेलो हेलो, चले खैर, इसको बाद में देख लेंगे हम। फिलहाल आपके मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। फरहीन, सालगिरह की बहुत सी खुशियां, मुबारक हो, सलामत रहे बर्थडे गर्ल, ये संजू कह रही हैं। और आगे एने भाई, गायब नहीं थी मैं तो, आपका शो सुनती हूँ, बस मैसेज कभी कभी करती हूँ। हिना गुल कह रही है, हिना ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कभी कभी एक मैसेज कर दिया करो, हमें पता चल जाए कि हमारी प्यारी सी बहन सुन रही है। और मैं तो कहीं गायब नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, शो सुना था कल आपका। सबा गर्ल, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारी प्यारी सी बहना के लिए। और जनाब मिर्जा साहब कहने पे ने, नदीम भाई कराची के अलावा हैदराबाद, रहीम यार खान मुल्तान और एपटाबाद के स्टेशन से आपके शो की ट्रांसमिशन बराए राश नशर की जा रही है। हाई हाई हाई, अरे क्या बात है, आपको कैसे पता है? दिल से सलूट और सलाम एफएम 100 कराची की टीम, मैनेजमेंट को जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। तो अड्डा है जी, ते है जी। और जनाब, और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेज की जाने। अरे वाह भाई वाह, दुबई से आया है जनाब और कहती हैं, गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे, तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की सातें, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर, क्योंकि आज जश्न आजादी का दिन शुरू हो चुका है, दिन तारीख तब्दील हो चुकी है, तो आज के दिन आजाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम, लहराया आजाद फिजा में चांद सितारे वाला परचम। जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। तो अशार इस तरह आएंगे ना तो मजा आएगा है जी। और आगाज किया रूहे मन ने, क्या बात है आपकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उन्हीं का मैसेज देखते हैं कि क्या क्या है और कुछ आ गए। अच्छा भाई, एक बड़ी जबरदस्त सी बात है, उससे आगाज करते हैं। और कहती हैं कि जब भी वतन की बात आती है तो सिर्फ चंद बातें मेरे जहन में आती हैं, ये मेरा प्यारा वतन है, मेरे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों का बेमिसाल समर है, इसके बागों में खिलते गुलाबों में मेरे वतन के शहीदों के लहू का रंग झलकता है, इसकी फिजाओं में मेरी ही सांसों की खुशबू रची है, इसके बुलंदो बाला फलक बोस पहाड़, गुनगुनाते हुए दरिया, लहलहाते हुए खेत और हसीन सब्जा जार मेरे ही जज्बों के रंग हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क इन्हीं रंगों इन्हीं जज्बों से ताकयामत जगमगाता रहेगा, आमीन सुमामीन, शादो आबाद रहेगा इंशाल्लाह, आमीन इलाही आमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, माशाल्लाह। दिल खुश हो रहा है, क्या जबरदस्त इंतखाब अपने मुल्क से मोहब्बत का। और लहलहाते खेत, हसीन सरसब्जो शादाब रंगों से जज्बे, और बुलंदो बाला फलक बोस पहाड़, और गुनगुनाते दरिया। क्या बात है, सांसों की खुशबू, वाह वाह वाह वाह वाह। और ऐसा है, हकीकत है, जो इस वतन से, इस मट्टी से मोहब्बत करते हैं वही है। अच्छा जनाब, एक और बहुत खूबसूरत सा इंतखाब इनका भेजा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि मुझे आप गो के इसमें नाम लिखा हुआ है शायर का, और बहुत तजब्बुब का शिकार हूं शायर के नाम के हवाले से, तो संजू मुझे जरूर आप तसीह कीजिएगा। खैर, इंतखाब बड़ा खूबसूरत है, जरा सुनिएगा कि खुदा करे मेरे अर्ज पाक पर उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहां जो फूल खिले हैं वो खिला रहे बरसों, यहां खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुदा करे न कभी खमेसर वक्कार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। और बहुत बड़े शायर का नाम अहमद नदीम कासमी साहब जो है, उनका ये इंतखाब भेजा है। संजू और भी चाहिए आपके इंतखाब, एक शेर जो है वो मैं आप लोगों की समातों की नजर करूंगा और उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे से कौमी गीत की जानिब लेके जाएंगे। मेरी मट्टी से मोहब्बत मेरी पहचान है, ये वतन मेरी इज्जत मेरी आन मेरी शान है।

वेलकम बैक कहेंगे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और वाकई जान जान पाकिस्तान। ए वतन तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। तो जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आप, केशा स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब और उसके बाद हल्की फुल्की सी चर्चा भी करेंगे। और हिना का मैसेज पढ़ लिया था हमने। अमीन कह रहे हैं थैंक यू बेस्ट विशेस का, संजीदा सिस्टर, पगली बहना और फरीन यूके वाली सिस्टर आपको भी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, सदा खुश हो रहें, शादो आबाद रहें। और साहबजादा कह रहे हैं नदीम भाई डिफरेंट डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, अच्छा जनाब ये मुझे GGAP का समझ में नहीं आ रहा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और उन्होंने लिखा है कि इसमें पाकिस्तानी फ्लैग डिफरेंट ग्रीन शेड्स में देखा होगा, फ्लैग का ओरिजिनल ग्रीन कलर कौन सा है साहबजादा कह रहे हैं। यार बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे मुझे तो इसका जवाब मालूम है लेकिन मुझे हैरत है कि आपको नहीं मालूम, बल्कि पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए, होगा यार सबको मालूम होगा। वैसे ग्रीन कलर तो ग्रीन है और ग्रीन के डिफरेंट शेड्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, फ्लैग्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शर्ट्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चूड़ियों में भी, तो जो बस ग्रीन कलर जो है वही यूज होता है। लेकिन जो आपने पाकिस्तानी परचम देखा है ना, जो ओरिजिनल पाकिस्तानी परचम जो कि GHQ में या हमारी जितने भी कौमी इदारे हैं वहां पर लहराते हुए जो देखा है, तो जाहिर है पाक फौज को जो है वो सल्यूट है, सलाम है। और पाक फौज जो है वो कभी भी गलत ग्रीन कलर, इम्पॉसिबल कि उसका फ्लैग जो है वो लहराए। तो पाकिस्तानी फ्लैग का जो कलर है, झंडे का जो रंग है, वही असल ग्रीन शेड है जो कि हमारे पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की निशानी है। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। वैसे साहबजादा यार आप इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, ये अजीब सा सवाल किया था हमने। और सभा आ गई हैं और कह रही हैं कि आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिर्जा साहब की कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो भाई। नदीम भाई क्या खूब प्ले लिस्ट मिली नगमों की आप बनाकर लाए हैं, जिनको सुन सुन कर हम जवान हुए, आज बचपन याद दिला दिया आपने, लव यू लाला, हाय सो स्वीट, थैंक यू यार। वतन कहानी पूरा, मतलब ये मैं, मेरी कोशिश होती है कि कौमी नगमे तो सारे ही जबरदस्त बेहतरीन है, तो कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट चलाऊं, हर जगह वो नगमा नहीं। वो बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो कि हम भूल चुके हैं, नौजवान नस्लों को नहीं याद। ये वाला जो है नगमा बहुत कम सुना होगा, मेरी जुबान होगी पुरानी, आनी जानी वतन कहानी।

वैसे ट्रैक जो है क्या बात है जनाब, और दिल जी चाहता है सुनते रहो सुनते रहो। अभी चलाया लेकिन अभी दिल कर रहा था फुल दोबारा से चला दूं। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ये वतन से मोहब्बत की बात है। और जनाब रूहेमन क्या भेज दिया हमने, हाय हाय। अच्छा इन्होंने जो एक लफ्ज जो है मुझे जरा उसको प्रोनाउंस सही करना होगा, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा इंतखाब एक और भेजा है, वो इंतखाब हम संजू का बिल्कुल शामिल करेंगे। चलो थोड़ी सी चर्चा हो जाए, आज 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है 12 बजे के बाद से, और जश्न आजादी का भरपूर मुजाहरा आपने पूरे पाकिस्तान में देखा, आतिशबाजी से और हवाई फायरिंग से और बाजों की आवाजों से, पटाखों की धूम धड़के से। तो ये खुशी जो मनाई जा रही है ये किस चीज की मना रहे हैं? आज के नौजवानों को ये बात पता है कि ये मुल्क कैसे आजाद हुआ? आप चाहें तो नवीन की किताब उठा लीजिएगा। सवीन सॉरी यार मजाक कर रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों के साथ भी ऐसा है, बच्चों के साथ भी ऐसा है, और उसके साथ साथ जो जनरेशन मिलेनियम वाली जो है, जनरेशन एक्स जो है, और जेंजीज जो है, मतलब ये मैं उम्र का जो एक बड़ा खूबसूरत सा इम्तिजाज बनाया हुआ है जेंजीज के नाम से या जेनेक्स के नाम से।

जीज के नाम से या जेनेक्स के नाम से, तो इसमें मुख्तसर बता देते हैं तो सब समझ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया इंटरनेट के आने के बाद से, 2000 के बाद से जब इंटरनेट जो है वो दुनिया भर छाने लगा, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, एक फायदा हुआ, नुकसान भी बहुत सारे हुए और फायदे भी बहुत सारे हुए। तो फायदा ये हुआ कि जितने एक आम इंसान, बिल्कुल आम इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत गरीब है, ठीक है ना, अगर उसके पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है तो वो पूरी दुनिया से जुड़ जाता है। तो जबकि उससे ये है कि अवेयरनेस आती है, पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस बहरान का शिकार है कि लोग जो हैं वो वीडियोस बनाने में और टिकटॉक्स बनाने में, अपनी मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर तस्वीरें बनाने में लग गए हैं। कहीं कोई हादसा हो जाता है तो उसको बचाने की बजाय लोग वीडियो बना रहे होते हैं, कहीं किसी की लड़ाई हो जाए तो उनको छुड़ाने की बजाय वीडियो बना रहे होते हैं कि भाई देखो, ये देखो, उसका रीजन क्या है, क्यों बना रहे होते हैं वीडियो। वीडियो इसलिए बना रहे होते हैं जी कि हमारा जो ये वीडियो जब वायरल होगा तो हम मशहूर हो जाएंगे, हैं जी, पैसे भी मिलेंगे। ये तो ये हवस, एक पैसे की हवस का सिलसिला है, होनी चाहिए। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए और हर इंसान कोशिश करता रहता है। लेकिन इससे हटकर अगर आप ये देखें कि मेरा कोई भी एक ऐसा अमल कि जिससे मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरा मुल्क जो है वो झुक रहा है, तो उसके लिए तो फिर तो फिटे मुंह ही कहूंगा जनाब मैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि अपनी ये जो हमारी पहचान है, हमारा मुल्क जो है, हमारे अमल ऐसे हों कि हमारे मुल्क को भी हम पर फख्र हो। हम तो फख्र महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अपने मुल्क पर फख्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बन जाओ भाई कि मुल्क भी आप पर फख्र करे। जैसे क्रिकेट की दुनिया में आ जाए तो जावेद मियादाद, बैट्समैन की अभी बात कर रहा हूं, हमारे सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनस, इमरान खान, तो ये क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने पैसा भी कमाया है, ऐसा नहीं कि फ्री में थोड़ी खेलते थे भाई, ठीक है ना। लेकिन इनका अमल ऐसा था कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी फखर बने, ये कि वसीम अकरम का नाम अगर कहीं लिया जा रहा है, वकार यूनस का, शोएब अख्तर का नाम अगर कहीं लिया जाता है, तो वो शेर ऐसा था हमारा कि पूरी दुनिया कहती थी कि यार पाकिस्तान का शोएब अख्तर, पाकिस्तान का शोएब अख्तर, ठीक है ना। तो ऐसा इसी तरीके से कायदे आजम का नाम है, सियासत में अगर आ जाए तो सियासत में बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नाम आपको पता है कि उनका नाम जो है पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि पता है भाई। इसी तरह खेल के अलावा आप दूसरे शोबे में चले जाएं तो मुख्तलिफ शोबों में जिन जिन लोगों ने एक अच्छा काम किया है तो मुल्क का नाम भी साथ में रोशन किया। हम क्या कर रहे हैं, पैसे किस तरह कमाने हैं भाई, बस ये देखना है, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचना। देखिए अगर आप जापान में चले जाएं तो जापान में आपका अगर वॉलेट गिर गया, ये आप लोगों ने रीलें भी देखी होंगी, बहुत सारी शॉर्ट्स देखे होंगे, रीलें देखी होंगी कि आपने जो है वो रोड के किसी किनारे पर आपने अपना पर्स रख दिया, तो एक घंटे के बाद वो वीडियो भी बना रहे होते हैं, एक घंटे के बाद भी वो चीज वहीं पड़ी हुई है, ठीक है ना। इससे क्या चीज साबित होती है, इससे ये साबित नहीं होती कि वहां पर चोरियां नहीं होती, इससे उस मुल्क की जो आवाम है वो सामने आ रही है, अरे यार कितना अच्छा मुल्क है यार, कितनी अच्छी आवाम है यार वहां के मुल्क की, वाह वाह वाह वाह क्या बात है। तो आप खुद सोचिए कि इसी तरह का अमल आप यहां पर कीजिए और आप क्या समझते हैं कि आप के मुल्क की आवाम के लिए कोई ये ऐसा बोल सकता है कि कितनी अच्छी आवाम है यार पाकिस्तान की, वाह वाह वाह वाह जबरदस्त। मलेशिया, मलेशिया की जो आवाम है, मैं आवाम की मिसालें दे रहा हूं, मैं मलेशिया की जो आवाम है वो अपने किरदार की वजह से बहुत ज्यादा

पूरी दुनिया में मशहूर है। वो आपसे आपको देखेंगे तो आपको देखकर उनका सलाम करने का स्टाइल ये झुककर जो है सर को नीचे हिलाते हैं कि आपको, तो हर कोई ऐसे ही करता है। किसी से कोई गलती हो जाए तो गलती से टक्कर हो गई, अच्छा टक्कर सामने वाले की गलती से हुई है, उसने टक्कर मारी आपको, तो जिसको टक्कर लगी है वो कहेगा आई एम सॉरी यार, मैं माजरत चाहता हूं, शायद मेरी गलती है, वो भी माजरत चाहेगा। तो यहां पर अगर किसी को कंधा लग जाए तो उसके बाद क्या होता है ये बातें मैंने कहा था कि मैं कड़वी बातें कुछ करूंगा, तो ये बातें ऐसी हैं कि इस पर थोड़ा सा सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने प्यारे से मुल्क के लिए सोचें, बर्दाश्त लेकर आए अपने अंदर। अब आपको एक और बात बता दूं, जो ऐसे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके जानने वाले, जिनके अपने रिश्तेदार, जिनके अपने खूनी रिश्ते, अम्मी अब्बू भाई बहन कोई बाहर के मुल्क गए हुए हैं, किसी भी मुल्क गए हुए हैं, चाहे वो अरब ममालिक में गए हुए हैं, यूएई में गए हुए हैं, फार ईस्ट की तरफ गए हुए हैं, अमेरिका की तरफ गए हुए हैं, इंग्लैंड की तरफ गए हुए हैं, तो आप यकीन मानिए कि उनको वहां जाकर इस चीज का एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी कितने अजीब से हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को काट रहा होता है, कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी पाकिस्तानी अवाम की, कौम नहीं कहूंगा अवाम की। खुदारा इस अवाम के लफ्ज को मेरे मुंह से निकालकर दूर फेंक दीजिए और एक कौम बन जाइए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर रखिए, तो यानी कि समझ रहे ना आप, बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैसेजेस आपके बड़े प्यारे प्यारे से आए हुए हैं, उनकी जानिब भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको लेकर जाऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त से कौमी नगमे की जानिब, और एलो खड़ो

इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर कहूंगा जहां भी जाऊं तेरा नाम साथ रखता हूं, ऐ मेरे वतन तुझे दिल के पास रखता हूं। मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे, चर्चा काफी हो चुकी है और देखते हैं कि आप लोगों के प्यारे प्यारे से कैसे मैसेज आए हैं और स्क्रॉलिंग हो रही है। अच्छा जनाब, सभा का मैसेज हो गया था। नदीम भाई, दैट इज अ डार्क ग्रीन, बिल्कुल सही का। और अस्सलाम वालेकुम, सुने हो आपको और तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स को जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम मेमन, सलीम मेमन भाई, आपसे हमारे अयूब लाला ने एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं अपनी बीवी से कभी पंगा नहीं लेता, क्योंकि जो औरत बर्तन और कपड़े धो सकती है तो वो मुझे भी धो सकती है। सही कहा आपने। और मिली नगमा, माओं की दुआ पूरी हुई और हमें डेडिकेट कर दें। भाई जो चल रहे हैं ना ये अच्छे नहीं है क्या? जो मेरे क्यू शीट में सारे चलाऊंगा मैं। हैं जी अमीन भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, आपको कहा भी था यार कि जो है क्या उसको कहते हैं कि 14 अगस्त तक फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा भाई फरहीन जो है उन्होंने, उनका मैसेज आया और उन्होंने संजू का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा किया है। और अब हम उस मैसेज की जानिब जाते हैं।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। अच्छा वैसे अल्लाह तेरी शान निराली, सबसे प्यारी सोनी धरती हमारी। अच्छा इन्होंने कहा था सोनी धरती और मैं यही समझा था कि ये सोनी धरती है, लेकिन वो भी हम चलाएंगे, जरूर चलाएंगे सोनी धरती। अच्छा जनाब पगली बहना कहाँ गायब हो गई हैं? एने भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि गली की छत की, अरे भाई हिज्जे करने पड़ेंगे यार, झंडियां। अच्छा गली की छत पर झंडियां लगा रही हैं और फ्लैग किस किसने लगाया है घर में? हाँ भाई घर झंडे किस किसने लगाए जरा बताइएगा तो सही। और वैसे अरे वाह भाई वाह, आपने कहा और इसका मैसेज आ गया मुश्का, कह रही है पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना अपने वतन के अलावा किसी दूसरे मुल्क में सब्जी के साथ धनिया और मिर्चें फ्री नहीं मिलती। जश्न आजादी मुबारक हो भाई। मुश्क किस दुनिया में रह रही हो? धनिए की एक गड्डी जो है वो 30 रुपए की 40 रुपए की है जी, और उसके साथ अगर मिर्चे लेनी है तो मिर्चे भी आपको उतने ही की मिलेंगी, कोई फ्री व्री नहीं है। अब यहाँ पर सब्जी के साथ धनिए के भी पैसे पूरे दो और मिर्चों के भी दो हैं जी। हाँ किसी दौर में वैसे ऐसा होता था कि सब्जी अगर आप खरीदते थे तो सब्जी के साथ सब्जी वाला जो है मिर्ची ऐसे ही डाल देता था, मिर्ची और धनिया ऐसे ही डाल देता उसकी जानिब से, लेकिन अब ऐसा कहाँ पता नहीं कहाँ होता है अभी ऐसा हो सकता है दूसरे मुल्कों में हो रहा हो या नहीं हो रहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और तो जनाब आज वैसे मैंने कोई सवाल भी नहीं फ्लोट किया था और हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब आ गए हैं। इंतहाई दुख हुआ भाई बेरुखी का, वाह वाह वाह वाह। एक तो आप फौरन जो है हसीना बन जाते हैं, फौरन रूठी हसीना। और कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सेंड किए अशार प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और आपने कल भी नहीं शामिल, अच्छा भाई नहीं किए थे यार, आप नाराज हो रहे तो हो जाए ठीक है ना यार। मुझे बड़ा अफसोस होता है अलीमुद्दीन साहब, इतने प्यार और मोहब्बत से आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, अब आप नहीं सुनते तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है ना भैया। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, ऑनलाइन आ जाइए, मुझे फरमाइशें आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिरते हो साहब। ज्यादा साहब कहते हैं नदीम भाई द वाइट स्ट्रिप इन पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट मिनोरिटीज, बिल्कुल सही कहा साहब ज्यादा साहब। अब असल में मैं आज कोई इन्फॉर्मेशन वाला शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 14 अगस्त है भाई, शुरू हो गई है, फुल हल्ला गुल्ला होना चाहिए, तो इसी हल्ले गुल्ले पर आपको एक और बड़ा प्यारा सा ट्रैक सुनाते हैं और मुझे बड़ा पसंद है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगा। चल बाय भाई।

वेलकम बैक कहेंगे, वतन की मट्टी गवाह रहना गवाह रहना। अच्छा भाई, साहबजादा का एक मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो अकलियतों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है, और सब्ज रंग किस चीज की अलामत है ये मैं भी आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के परचम में जो सब्ज रंग है मुसलमानों की अक्सरियत और इस्लामी तशखीस की अलामत है ये, और सफेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले जो है गैर मुस्लिम अकलियतों की नुमाइंदगी करता है और उनके हकूक जो है वो मसावी हैसियत रखते हैं, वो इस चीज की भी अलामत है। और चांद और सितारा जो है ये किस चीज की अलामत है, ये आज चले मैंने सवाल फ्लोट कर दिया। सफेद रंग और हरा रंग ये जिन चीजों की अलामत है हमारे कौमी परचम में, ये तो मैंने बता दिया, आधा जो है वो हमारे साहबजादा भाई ने बताया, आधा मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसमें जो चांद सितारा है ये किस चीज की अलामत है ये बताइएगा। हैं जी ते हैं जी, साहबजादा साहब जरा आप भी बताइए इस हवाले से, हैं जी सवाल थे तुसी छोटे सी। सलाम, कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू और सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर का फिर मैसेज आ गया और फिर वही वाला मैसेज आया, तो बहना हमने अभी आपको याद किया, बेतहाशा किया और कहा कि आप कहाँ गायब हैं, तो आपका दोबारा वही मैसेज आ गया, क्यों हैं जी डंगाना नहीं डेडिकेट करना है आज, हैं जी संजू को। और जनाब मोश्क आ गई हैं, कहती हैं हैंडसम, जश्न आजादी की खुशियां, बचपन की यादें, झंडियां और घरों की सजावट से जुड़ी हैं, वक्त के साथ सजावट के अंदाज बदल गए हैं मगर वतन से मोहब्बत और 14 अगस्त का जज्बा आज भी वैसा ही है। जदीद सजावटों ने जश्न आजादी की खुशियों में मजीद रंग खूबसूरती और जोश भर दिया है। और ये कह रही है कि ये अमीन ताया किस को चुड़ैल कह रहे हैं, हाँ आपको अच्छा लगता है कि नहीं, चुड़ैल बहना कहते हैं वो, अगर अच्छा लगता है तो कोई मसला नहीं है और अगर नहीं लगता तो आज के बाद वो नहीं कहेंगे, उनके कान खींच लेंगे। अच्छा, इन्होंने जो जश्न आजादी की खुशियों के हवाले से मुश्क ने जो बात की ना सजावट झंडियां घरों में, तो इस हवाले से जाहिर है मैं इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैंने आपसे जिक्र किया, जिक्र खैर किया है कि जोश व जज्बा जो हमारी नौजवानी में जो होता था वो दिखने को नहीं आ रहा, क्यों यकीन मानिए कि ऐसा था कि रौनकें गली मोहल्लों में और बाजारों में ऐसी होती थी कि ईद का समा होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वो चीज कम, उसमें कमी वाकई हो रही है, तो ये चीज जो है वो काबिले फिक्र है। तो लिहाजा जिस तरीके से हम अपनी बर्थडे मना रहे होते हैं, ठीक है ना जी, सालगिरह का दिन मना रहे होते हैं और खुशियों के दिन मना रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारा, तो इसमें खुदारा ऐसा मत कीजिए, यानी कि समझ रहे हैं ना जो मैं कहना जा रहा हूं। और मुश्क कह रही है दुआ है कि ये मुल्क हमेशा सलामत रहे, इसकी मिट्टी हमेशा आबाद रहे और इसके लोगों के दिलों में मोहब्बत इत्तेहाद और उम्मीद हमेशा जिंदा रहे। इख्तिलाफ अपनी जगह मगर वतन से मगर वतन सबसे पहले, ये फैक्ट है, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। मिली नगमे सुपर हिट है भाई, मुश्क बड़ी प्यारी प्यारी सी और अच्छी बातें कर रही हो। ये तमाम चीजें अपनी जगह पर, वाकई में जो अपना मुल्क है अपना जो वतन है वो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन हमने इसको सबसे पहले नहीं रखा हुआ। वो जो मेरी बात की तस्दीक की है संजू ने कि तलख तो है, सच है मगर तलख है, तो हमने जो है वतन को सबसे पहले नहीं रखा हुआ अपने सबसे। अब पूछेंगे क्यों कैसे, ये मैंने गो के सवाल किया था शो के आगाज में ही, मगर इसका जवाब किसी ने, कोई सूदमंद किस्म का जवाब ही नहीं आया भाई। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, ड्राइंग रूम अलग से सजा हुआ है जहां पर मेहमान अगर आकर बैठते हैं तो उनको अच्छा सा लगे भाई, सोफे भी लगे हुए हैं, कारपेट भी है भाई, जबरदस्त सीनरियां भी है, एसी भी लगा हुआ है भाई, जबरदस्त बड़ा बहुत अच्छा घर। इसी तरह
बेडरूम सजाते हैं, लॉन्ज सजाते हैं, लेकिन जब आपके घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, तो बस ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। गंदी सीढ़ियों से गुजर रहे हैं जहां पर कचरा फैला हुआ है, गली में पहुंचे हैं तो गटर खुला हुआ है, तो सोचिए अंदर जितनी भी सजावट है उस किस काम की, जब आपका मोहल्ला ही गंदा है, आपकी सीढ़ियां गंदी हैं और आने जाने वाला जो भी होगा उसी राह गुजर से गुजरेगा ना आपके घर आने के लिए। तो आपका घर आपका सिर्फ जिसमें आप रहते हैं वो ही नहीं है, आपका घर आपका गली भी है, आपका मोहल्ला भी है। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि इत्तेहाद नहीं रहा, मोहल्ले के चार लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो किसी बात पर इत्तफाक ही नहीं करते हैं, पैसा खर्च करने हुए जान जाती है, घर पे नया टीवी ले आएंगे, एलईडी ले आएंगे, नया मोबाइल खरीद लेंगे, लेकिन मोहल्ले का जो चंदा होता है ना, जिसके लिए सफाई के लिए या गटर की सफाई के लिए जो चंदा इकट्ठा होता है, उसके लिए 100 रुपए देते हुए जान जा रही होती है, उस पर फड्डा कर रहे होते हैं कि भाई नहीं भाई नहीं दे रहे भाई, हमने थोड़ी खराब किया, हमने गटर बंद किया, ये बताए आप जरा, इस तरह के फड्डे होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है, इत्तेहाद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। तो अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को प्यारा बनाएं, हसीन बनाएं। ये नहीं कहते भाई ये हुकूमत करेगी तो हम करेंगे भाई, ये इनको पता नहीं है, गटर साफ ही नहीं करते भाई। अब भाई वो अपना काम अगर सही तरह नहीं कर रहे तो आप तो कर सकते हो ना, जहां पर रह रहे हो गंद में रहोगे। माना कि आपकी बात दुरुस्त है, इदारों को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, मगर एक इदारा जो है मिसाल के तौर पर गटर बंद है और आप चले, एक बंदा चला गया वहां पर और भाई हमारे मोहल्ले का गटर बंद है यार, ये अर्जी ले लो, तो वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। लेकिन मोहल्ले के जब 10 अफराद उस बंदे के पास जाएंगे ना और जाकर उसको बोलेंगे भाई तू आ जा बस वरना बहुत बुरा हो जाएगा भाई, तो 10 लोग जब चले जाएंगे तो वो एक ताकत बनकर जाते हैं, मोहल्ले की ताकत बनकर। तो सामने वाले जो भी इदारे में लोग होंगे ना, वो फौरन देखेगा भाई भाई जाओ पहले यार वो सही कर दो यार, मसला हो जाएगा वरना पूरा मोहल्ला आ गया था भाई, आप समझ रहे हैं। आप एक बंदे के ऊपर नहीं छोड़े ना, जब इत्तेहाद होता है ना, मुट्ठी जब बंद होती है तो फिर सामने वाला कहता है मुक्का आ रहा है भाई, है भाई एक उंगली से किसी के गाल पर आप एक सिर्फ उंगली मारेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा अरे बच्चा 2 उंगलियां भी मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पूरा हाथ जाएगा ना चमाट वाला, ठीक है ना, वो बोलेगा भाई चमाट आ रहा है या मुक्का आ रहा है। ये आपको मिसाल ये दे रहा हूं कि एक मुट्ठी बन जाए, तो आज ही से 14 अगस्त से ये अहद करें कि ये काम हम अपने मोहल्ले से स्टार्ट करेंगे, और हर कोई हर गली में हर मोहल्ले में जब इत्तेहाद होगा, अपने गली को, अपने घर को, अपने फ्लैट्स को जो है हम साफ सुथरा रखेंगे, इत्तेहाद एक दूसरे से करेंगे, तो यकीन माने कि इसी तरह 1 से 2, 2 से 3 मोहल्ले, फिर इलाका, फिर शहर और फिर हमारा मुल्क जो है वो सवर जाएगा और हम आवाम से कौम बन जाएंगे। यानी कि समझ रहे हैं ना आप, ये चर्चा कर ली है ना, चलिए इसी बात पर आपको लेकर चलते हैं एक और जबरदस्त से ट्रैक की जानिब। यादें आपकी ताजा करते हैं, जैसे कि हमारे मिर्जा साहब ने किया सी कि यार पुराने पुराने कौमी नगमे सुना रहे हैं आप, तो ये जनाब नूरी बैंड था एक और ये भी एक मिली नगमा है।

वेलकम बैक कहेंगे चाहते मेरी सारी, इस धरती पे कर दूं सब कुर्बान। अच्छा भाई, एक बहुत ही जबरदस्त इंतखाब भेजा है फरहीन ने, कह रही है ता कयामत शाद रखना वतन को, ए खुदा गुलिस्तान बनाना वतन को, मस्जिद में नमाजी मंदिर में पुजारी, इबादतों से अपनी सजाना वतन को, इंसानियत और इखलास का गहवारा हो, मोहब्बत व वफा से महकाना वतन को, ईद की खुशी में दशहरा होली में वासियों को सदा मिलाना वतन को, चूल्हा और बुद्धा चूल्हा नानक का और बुद्धा की बुद्धि, कृष्ण और मसीह का समरा बनाना वतन को, महकती रहे सरजमीन अपनी बहारों से, यारब खजा के दिन ना दिखाना वतन को। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की मिनोरिटी और मेजॉरिटी दोनों का जिक्र है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि सब्ज रंग जो है हमारे कौमी परचम का, वो मुस्लिम हमारे जो इस मुल्क में आबाद हैं उनकी तर्जुमानी करता है, और सफेद रंग जो है वो जो है मिनोरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो उसके साथ मैंने चांद और सितारे का पूछा है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने बताया नहीं। तो खैर, मैंने ये बात कही थी, तो इसी हवाले से हमारे मिनोरिटी के हवाले से भी चूल्हा नानक का और बुद्धा की बुद्धि, कृष्ण और मसीह का समर बनाया वतन को, इसमें चार मिनोरिटीज का जिक्र है, जिसमें सिख हैं और बुद्ध मत जो कि ज्यादातर चीन वगैरह में आबाद हैं, और इसके साथ हिंदू और ईसाई, इन सब का जिक्र इसमें किया है। भाई बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं आपके मैसेज की जानिब, आगे बढ़ते हैं जनाब। अरे क्या बात है, गुल साहब आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम, 14 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और क्या कहते हैं। अच्छा, इन्होंने एक वीडियो भेज दी है, वो मैं खैर, अच्छा इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, सर दे के ही तो ये सर बचा है, वाह वाह, सर दे के ही तो ये सर बचा है, ले दे के यही एक घर बचा है, वाह वाह, बहुत खूब गुल साहब, जबरदस्त। और उसके साथ ही साथ जनाब ताहिरा मसूद भी आ गई हैं, क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, बड़े मैसेज आज, तो आज ताहिरा ने भी मैसेज अच्छा भेजा है, और कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं परवर एक पाक परवरदिगार हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन सलामती और खुशहाली अता फरमा, पाकिस्तान को हर आफत मुसीबत दुश्मन और फितने से महफूज फरमा, और इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों के लिए आसानियां सुकून और बरकतें अता फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम उदायम और सरबुलंद रख, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खूब ताहिरा, जबरदस्त। और कहती हैं कि कोई शिकवा हो शिकायत हो मगर अपना है, तपते सहरा में यही एक शजर अपना है, वाह वाह, बेघरी जिनका मुकद्दर है उन्हें देख जरा, और फिर शुक्र बजा ला कि ये घर अपना है, वाह वाह, बहुत खूब। अमरीन हसीब अंबर का ये इंतखाब इन्होंने भेजा है, और परचम पर चांद सितारा, वाह वाह वाह, रोशनी इल्म तरक्की और कामयाबी की अलामत समझा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है आपने, बेहतरीन, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जवाब आया और दुरुस्त आया ताहिरा की जानिब से। और संजू गायब हो चुकी हैं, कहां हो संजू तुम, और हमारी जरीन बहना जो है उसके भी मैसेज आए हुए हैं, वो अभी हम शामिल करते हैं। और जनाब बढ़ते हैं, सुने हो मेरी वाइफ ने कहा है कि किसी दिन आपको अपने हाथ की बनी हुई मसालेदार और क्या है
ओहो जबरदस्त, हाथ की बनी हुई मसालेदार और पता नहीं कुछ और भी लिखा है मेमनी बिरयानी जो है वो खिलाएंगी, सलीम मेमन साहब कह रहे हैं। तो भाई हमारी प्यारी सी बहना मिसेस सलीम मेमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा। अच्छा, पहले जब हम छोटे होते थे तो गलियों पर और सड़कों पर सब दोस्त मिलकर जो है सफाई वगैरह करते थे और सब साफ सुथरा होता था। हम सब बहनें मिलकर भी ऐसा करती थी, मगर नहीं, ये दो मैसेज मिक्स कर दिए। नदीम भाई, जब हम बहनें छोटी होती थी तो पूरी गली साफ रखते थे, अभी जब बड़े हो गए हैं तो गली में गंद ही गंद है। जाहिर है, ये सबा गुल हमारी प्यारी सी बहना कह रही हैं, और वो इस जाहिर है जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो गली मोहल्ले में तो नहीं टहल सकती ना। और जरीन मेरी प्यारी सी बहना ने कहा है अच्छा सा सॉन्ग संजू के नाम कर दें। शहजादी का एक और मैसेज भी है, वो ये इनका मैसेज था कि पहले जब हम छोटे थे तो गलियां सजाया करते थे, सब दोस्त मिलकर अच्छा लगता था, अब तो सब कुछ अलग है, हमको बड़े हुए काश फिर से छोटे हो जाएं। हाय, सो स्वीट जरीन मैना। और जरीन नूर का ये मैसेज जो है ना, ये इतना खूबसूरत और प्यारा मैसेज है कि वाकई में मुझे भी अपना बचपन भी याद आ गया, लड़कपन भी याद आ गया, कि हम भी अपने गली और मोहल्ले यकीन माने सजाते थे। अच्छा, उस जब हम छोटे थे तो उस वक्त जो झंडियां हैं, अभी तो जाहिर है दौर बदल गया, मैं बात आपसे कोई 25 साल पुरानी कर रहा हूं, तो दौर बदल गया, अब जो झंडियां आपको मिलती हैं वो पूरी धागे में पिरोई हुई मिलती हैं ना, तो आप सिर्फ जाकर कीलों के साथ उसको लगाना होता है। तो जब हम छोटे थे तो उस वक्त सिलसिलाकार कुछ ऐसा होता था कि झंडियां जो हैं वो धागा अलग से आता था, झंडियां अलग से आती थी, और उसके लिए हम गोंद भी लाते थे या आटे से जो है वो झंडियां जो हैं वो चिपकाते थे, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है, और एक नहीं हजारों झंडियां इस तरह बनाते थे। जाहिर है एक तो बच्चा नहीं बना सकता, तो पूरी मोहल्ले के बच्चे जो है वो साथ मिलकर ये काम कर रहे होते थे और अपने पूरे मोहल्ले को सजाते थे। उसके साथ साथ एक बड़ा सा झंडा होता था जो कि उस वक्त हमारे जो बड़े थे, हमारे मोहल्ले के लड़के जो बड़े थे, यानी कि 20-25 साल के जो होते थे, तो वो क्या करते थे कि वो एक बड़ा सा झंडा लेकर आते थे, बहुत बड़ा सा, तो वो हमारे अपार्टमेंट में बिल्कुल बीच में वो झंडा भी जो है वो लहराया जाता था। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, हम फ्लैट्स में रहते थे तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में दरमियान में जो है वो झंडा, तो वो उस झंडे को देखकर हम इतना खुश होते थे कि मैं आपको इजहार नहीं कर सकता कि उस वक्त हमारी खुशी की इंतहा क्या होती थी। बाजे शाजे नहीं होते थे उस वक्त इतने, लेकिन वो छोटे छोटे से बाजे, सीटियों टाइप के जो बाजे होते थे वो होते थे, तो उनको भी जो है उससे भी जो है हम जो महजूज होते थे तमाम बच्चे, तो और उसके साथ साथ यकीन मानिए कि ऐसा ही होता था। अब तो सिलसिलाकार ऐसा है कि बाजारों में और रोडों पर जो है बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं और कौमी नगमे चल रहे हैं, तो उस वक्त ये ऐसा नहीं था। तो अगर किसी अपार्टमेंट में पूरा एक साउंड सिस्टम आया करता था तो वो साउंड सिस्टम के थ्रू जो है ये सारा होता था, और मिली नगमे जो है वो खुद भी गाते थे, मोहल्ले वाले भी गाते थे और गुनगुनाते थे, तो एक बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त जरीन नूर मेरी बहन ने क्या याद दिला दिया, मेरी बचपन की यादें, मेरे लड़कपन की यादें जो हैं वो उसको हिला के रख दिया है, तो इतना मजा आता था। तो अब जब हम देखते हैं इन चीजों को कि आजकल के बच्चे और या आजकल के नौजवान क्या कर रहे हैं, हालांकि उनको इतना उनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हैं कि हर चीज रेडीमेड मिल जाती है, तो हम तो खुद ये तैयार करते थे तमाम चीजें, तो उसके बावजूद जो है वो जोश व खरोश नहीं है जो हमारे बचपन में और हमारे लड़कपन में था। तो एक दुआ भी है, मैं अपने दिल से ये दुआ करता हूं कि हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में वही जज्बा बेदार हो जाए अपने मुल्क से मोहब्बत का, अपने मुल्क से चाहत का, जो जज्बा हमारे दिलों में अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम ये जो हमारे नौजवान हैं या बच्चे हैं ये अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते, करते हैं, मगर इजहार का तरीका कार बदल गया है।
तो ये इजहार का तरीका कार जो है ना, ये सदियों से जो मतलब सदियां कह रहा हूं 79 साल से जो चल रहा आ रहा है, हमारा दिल चाहता है कि वैसा ही हो और होना भी चाहिए। वो जोश, वो जज्बा, वो शौक, ये तमाम चीजें साथ होनी चाहिए। खैर जरीन, आपका ये मैसेज बहुत प्यारा था, सुने हो। अच्छा ये तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, अरे अल्लाह जी, एक तो आपका जब ये मैसेज आता है ना तो मेरा दिल फौरन हिल जाता है। आप मेरे बड़े हैं, खुदारा इस तरह के मैसेज ना किया करें कि आप जो है माजरत खां हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, आप मेरे बड़े हैं और मैं यकीन माने दिल से आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार करता हूं, अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब। बस आपका ये जो होता है ना, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब इस तरह के मैसेज आ जाए, मैंने मैसेज पढ़े हों आपके और आपकी जानिब से आए जब मेरे मैसेज नहीं पढ़े। भाई अगर आपने नहीं सुना तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ठीक है जी। और वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बेरुखी वाला मैसेज है, ये वाला नहीं पढ़ना हमने दूसरा इनका पढ़ना है जिसमें इन्होंने कुछ अशार भेजे हुए हैं। हाँ, और ये वाला भी नहीं मैसेज पढ़ेंगे कि अफसोस अफसोस, यही मेरा दिल दुखाते हैं। आपका मैसेज पढ़ा था हमने कल भी और आज भी शो के आगाज में, आपने उस वक्त तक मैसेज नहीं भेजे हुए थे जब मैंने आपका मैसेज बॉक्स देखा। खैर जी, वो कहते हैं कि शायर जो है मोहियुद्दीन हमदम साहब हैं और कहते हैं, खुद फरेबी का हमारी पूछो ना आलम के हम, अच्छे दिन दिन आएंगे कह के दिल। अच्छा ये अब उर्दू की उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और आगे दूसरा शेर जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहेंगे दिल को बहलाते रहे, जिंदगी साबित हुई संगे गिरा है दोस्तों, और उस पत्थर से हम सर अपना टकराते रहे। ठीक है ना, वो बीच में एक लफ्ज की वजह से पूरा शेर समझ में नहीं आया। उनसे क्यों तर के ताल्लुक पे मुझे लगता है जुर्म, शायद कोई संगीन किया है मैंने। अच्छा ये समझ रहे हैं

अच्छा ये समझ रहे हैं कि आज जो शो है वो शेर व शायरी का, जो आज तो नहीं है जनाब। और खैर कोई मसला नहीं है, आपको पता तो चल गया होगा आप शो सुन रहे हैं। और तमाम हमारे रेडियो के सामाइन और खास तौर पर मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम पेश किया और जश्न आजादी की मुबारकबाद दी है। हर लम्हा दुआ गो नेक ख्वाहिशात के साथ हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफ बी एरिया कराची से। गुल साहब कहते हैं कि मैंने अपने अफसाना कायद आजम में लिखा था, चांद हर बच्चा सितारा हर पाकिस्तानी। हाय हाय क्या बात है, चांद हर बच्चा सितारा हर पाकिस्तानी, सफेद अमन की निशानी और सब्ज रंग अकलियत की पहचान है। आपने वो अफसाना पढ़ा भी था अपने प्रोग्राम में? जी बिल्कुल, मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है, मगर झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा याद नहीं आ रहा। इतना याद है कि आपने एक अफसाना भेजा था। हमारे प्यारे से शहजादे आ गए हैं फरहान भाई और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल स्वीट लिसनर्स, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे? अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी और तमाम दोस्तों के लिए ढेरों सलामती की दुआएं दी हैं। तमाम ही अहले वतन को मेरी जानिब से जश्न आजादी मुबारक हो। तरक्की और इस्लाम, सितारा इल्म की रोशनी, बिल्कुल चांद सितारे के हवाले से आपने भी फरहान भाई बिल्कुल दुरुस्त बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और पता नहीं क्यों हंसी आ रही है मुझे। संजू कहाँ हो भाई, तुम्हारी जानिब से कुछ आ नहीं रहा भाई, ये गलत बात है। और ताहिरा कहती है यौमे आजादी मुबारक और पाकिस्तान मेरी पहचान। शायर हैं जाहिद शमसी। अच्छा आपका ये इंतखाब चले पढ़ लेते हैं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। खलूस व प्यार के रिश्तों से प्यार करता हूँ, मेरे वतन तेरे लोगों से प्यार करता हूँ, इन्हीं गुलाबों से महकी हुई है तेरी फिजा, मेरे वतन तेरे बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं तेरे खाक के जर्रे गौहर समझता हूँ, तेरी फलक के सितारों से प्यार करता हूँ, मैं तेरे सारे रिवाजों को मोहतरम समझूं, मैं तेरी सारी जुबानों से प्यार करता हूँ। ये मेरे ऊपर है, मैं वाकई में ऐसा ही है कि मैं तेरे सारे रिवाजों को मोहतरम समझूं, मैं तेरी सारी जुबानों से प्यार करता हूं, मैं बरगे सब्ज अगर हूं तो तेरी निस्बत से, मेरे शजर तेरी शाखों से प्यार करता हूं, मैं देख सकता नहीं तेरे रुख पर तारीखी, इसीलिए तो उजालों से प्यार करता हूं, जो तेरी शान में अहले कलम ने की तख्लीक, मैं ऐसी नज्मों से गजलों से प्यार करता हूं, जो तेरे वास्ते मांगे दुआएं जाहिद ने, जो तेरे वास्ते मांगी दुआएं जाहिद ने, मैं ऐसी सारी दुआओं से प्यार करता हूं। जाहिद शमसी, बहुत खूबसूरत इंतखाब ताहिरा, माशाल्लाह से आज आप छा गई हैं। हैं जी, जे हैं जी। तो जनाब मेरे ख्याल में अभी अम्मी बिरयानी ज्यादा बनाया करती थी, बस यादें रह जाती हैं। जरीन नूर कह रही हैं, आए आज क्या कर रही हो जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन, हमारे दिल को टच टच कर रही हो, हमें भी अम्मी याद दिला दी हमने और आपके उस मैसेज से बचपन याद दिला दिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आखिर में थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और बड़े प्यारे प्यारे से मिली नगमे जो हैं वो आपकी समातों की नजर करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा, पैगाम जो है मेरी तरफ से वो ये है कि क्या कहूं यार, बहुत सारी बातें हैं दिल में, अपने वतन से मोहब्बत बेशुमार करता हूं मैं, ये फैक्ट है। अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हर्फ वफा खून से तहरीर करेंगे। आजादी जो है ना, ये सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यकीन मानिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे आजकल के जो बच्चे हैं ये जिम्मेदारी बाजे बजाकर जो है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें। मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करना है और उसके लिए मेहनत और ईमानदारी जो है उसके साथ करना है और अपना फर्ज समझकर ये हमने निभाना है। और अगर हम अपना फर्ज

कर ये मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना, आप यकीन मानिए कि जो चीज की ख्वाहिश आप रखते हैं ना, यानी कि पैसे की, वो भी आपको मिलेगा। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हलाल पैसा आप कमाएंगे, उससे मुल्क भी तरक्की करेगा और यकीन मानिए कि आप भी तरक्की करेंगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि आइए और आज से ये अहद करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएंगे, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उस मकाम पर पहुंचाएंगे कि ये पाकिस्तान, ये सब्ज हिलाली परचम जब कोई देखे तो वो ये कह उठे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही जनाब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल, और कल भी हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे भरपूर तरीके से, क्योंकि आज वैसे जो प्रोग्राम है मेरा होता तो 13 अगस्त वाला है, 14 अगस्त का प्रोग्राम मेरा कल होगा, लेकिन क्योंकि 12 बजे के बाद डेट लग जाती है 14 अगस्त और हम वो खुशियां मना रहे हैं। तो जाते जाते एक बहुत ही प्यारा कौमी नगमा है, गीत है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस नगमे की, इस ट्रैक की जितने भी शायरी है वो गौर से सुनिएगा प्लीज। ये मैं अपनी जानिब से अपने तमाम सुनने वालों को, अपने पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट कर रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: ہاؤ
1: مان کے کل خدا رحمت کل نبی رحمت

0: آؤ
1: آؤ اہل شریف سنگر.

حسن میں نفسی نفسی کرے گا جہاں.

0: ایک طرف جستجو، ایک طرف ہے کوشش،
1: ایک طرف آرزو، اس سے پوچھے ہم نے